0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK.
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं. इज इट फायर?

0: front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right, and Center.
0: Hard facts.
2: War-struck country.
0: Hard questions.
2: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
3: In the Kargil area.
2: North Ukraine.
4: In France. In Italy.
2: At Srinagar.
4: France.
1: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
5: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
6: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
7: हरियाणा।
6: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
7: डेढ़ महीने पे।
6: आपकी फैमिली है?
7: और
6: बच्चे हैं?
7: तीन साल।
6: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
7: बहुत।
6: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
7: श्रीनगर तक अलाउड।
6: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
5: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।

0: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
1: You're watching NDTV 24/7.
2: The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues.
1: With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig.
3: Welcome back. You see, with just 3 days left in the monsoon session, the Parliament's logjam, well, it shows absolutely no signs of easing whatsoever. Opposition leader Rahul Gandhi last evening, once again, he renewed his demand that the Home Minister make a statement in the House. Well, a statement on who ordered the alleged firing on the students and that the Prime Minister must apologise. Rahul Gandhi said that no discussion will take place until these demands are met, these two demands. The government, meanwhile, it's hit out at Rahul Gandhi, with Union Minister J.P. Nadda accusing Rahul of running away from the debate. And he also questioned whether Rahul Gandhi is deaf to the students' plight, further accusing him of creating anarchy. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju, he insists that the government is ready with a detailed response. And well, urged the opposition to have the courage to listen to Home Minister Shah's full statement. Well, shifting our focus, the Jharkhand student protest has entered day 18 after a dramatic escalation during yesterday's march towards the assembly. Protesters faced lathi charge, tear gas and even water cannons as police moved to disperse the crowd, with several protesters, mind you, alleging injuries and excessive use of force by the cops. High drama, needless, was witnessed at the Jharkhand assembly late in the evening when cops were seen lathi charging protesters and also chasing them away. Meanwhile, student leader Devendra Mahato, who, by the way, participated in the protest march as well, despite losing 10 kilos, was hospitalized after his health deteriorated. He says he was pushed and harassed by the cops. The crackdown has also triggered strong reactions from protesters, with allegations now surfacing that even women were not spared during police action. We get you some reaction on the story.
4: आज छात्रों के ऊपर रांची पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता से लाठी चार्ज किया है, उसके बाद से ये जो स्टेडियम है जहाँ पे इनका इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, उसका माहौल अजीब सा हो गया और ये बच्चा हमें रोते हुए मिल रहा है। बेटा क्या हुआ, पहले ये बताओ।
5: पीछे सर मेरे को, हम लोग साइड पे, जब 3 बजे था, हम लोग तीन बैरिकेड तोड़ दिए थे। मैं साइड पे ही था, हम कोई बैरिकेड नहीं तोड़ा, मैं साइड पे ही था, मैं लास्ट में चल रहा था। 3 बैरिकेड टूट गया था तो हम लोग साइड पे एक दुकान में बैठ के पूरी बट रहा था, मैं पूरी खा रहा था, सुबह से एक दाना पेट पे नहीं गया था। मेरी माँ कैंसर मरीज जो बोली थी कि आओ छात्र के सपोर्ट लेना चाहिए हमको, तो आए, हम लोग पूरी खा रहे थे, आ गया पुलिस दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। फिर मारने के बाद टियर गेट टियर गैस भी छोड़ा गया, आग देखिए सर फूल गया है पूरा, तब मैं चश्मा अपना ही छोड़ दिया था भूल से। मेरी माँ के ऊपर भी टियर गैस में क्या किया, मम्मी सांस लेने को दिक्कत हो गई, सब कुछ बचाए मिल के। सर ने अच्छा अपना बर्थडे का गिफ्ट दे दिया हम लोग को, सर बहुत अच्छा हम लोग को गिफ्ट दे दिए।
6: हम आज 17 दिन से सत्याग्रह में, 9 दिन भूख हड़ताल में, और अभी का समय में हमारा जैसे भूखे आदमी को भी पुलिस धक्का मुक्की कर दिया, हमको भी प्रताड़ित कर दिया, और अभी जबरदस्ती हमको एम्बुलेंस में डाल दिया। ये स्थिति है, ये विडम्बना है, लेकिन मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगा, इस लड़ाई को मैं कंटिन्यू रखूंगा।
3: Well, as you can sense it, it was a day of high drama in Ranchi yesterday as protesting students, they marched towards the state assembly, braving lathi charge, water cannons and even tear gas. NDTV's managing editor Padmaja Joshi was also on the ground capturing the action as it unfolded firsthand. Here are some glimpses from ground reports.
1: Who come here. Now this is the month of Sawan. It is very, very auspicious time, and you've got locals who have come here after going to the temple, and they are putting a tilak with all these people who are now headed out. You know, they are going to the Vidhan Sabha, they are going for a Vidhan Sabha Gherao, and they are here, you know, putting that small tilak on the head of all of these young men before they leave this stadium. Ma'am, aapka naam kya hai?
7: Hamara naam Suman Kumari hai. और मैं रांची से हूँ और आज सोमवार का दिन है, मैंने सावन पे फास्टिंग रखा है। आज हमारे लिए इन जेपीएससी के बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मैं सुबह उठते साथ भोले बाबा के पास पूजा करते ही अपने भाइयों को अपने बहनों को आके तिलक दे के उन्हें मैं आंदोलन के लिए भेज रही हूँ।
2: तो क्यों आपको क्यों लगा यहाँ आकर के आप तिलक क्यों लगा रही हैं?
7: भाई लोग जा नहीं सकते हैं तो उनके लिए मुझे आना पड़ा, मुझे आना जरूरी था।
2: You got two of the organizers who are now on top of a barricade, including a young lady. Now they've got on top. We had some unfortunate scenes where the protester had flung slippers. These slippers and shoes had been flung in the direction of the police. So you see a lot of abandoned slippers which have been thrown at the cops over here. But after that, you see the organizers getting on top and asking people to settle down. Don't engage in violence. Don't engage with the police. Don't let things get out of hand. So finally now, things are under control. For a bit there, it looked like the situation was getting tense and the barricades were being broken. But now, the organizers have come and tried to take control of what the situation is like over here. One policeman injured, which we can confirm to you because he was led away right in front of us.
8: मेरा नाम संजय माथुर और हजारीबाग से आए हुए हैं। हम जेपीएससी के छात्र हैं।
2: आपको लाठी लगी?
8: लाठी पूरा पैर से माथा तक, माथा पूरा देखिए, इतना जोरदार लाठी था कि मेरा सर पूरा फट गया है।
2: आप कहाँ?
8: हम यहीं थे, यहीं पीछे थे और लाठीचार्ज स्टार्ट कर दी और पूरा इतना बेरहम नहीं मारना चाहिए, इतना निरंकुश सरकार नहीं होना चाहिए कि झारखंडी छात्र को लाठी से मतलब मारना चाहिए।
2: पर आपने तो कहा था कि आप यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे।
8: ये पीसफुल ही थी, हम लोग कुछ नहीं बोलिए किसी को, आज एक हम लोग हाथ चलाए हैं और ढेला फेंके या किसी तरह से गाली दिए हैं, हम लोग शांतिपूर्ण विधानसभा जा रहे थे मार्च करते हुए और हम लोग को विधानसभा पहुंचे भी नहीं दिया और हम लोग को मार के यही सारा माथा।
2: ये आपके क्या खून लगा हुआ है?
8: खून लगा हुआ देख लीजिए आप,
2: पूरा क्या आपके आपके ये All right, so he's showing, he's got a blood-stained cap here.
8: पूरा पूरा देखिए, ये बलर देखिए, मेरा शर्ट देखिए, शर्ट से पूरा बांधे हुए थे और इस तरह से अगर झारखंडी छात्र अगर प्रशासन मारेगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मर जाए, हम लोग को हक अधिकार ना चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए।
2: आपका नाम?
9: चंडी तिवारी मैम नाम है मेरा।
2: चंडी बताइए क्या हुआ?
9: जितना जुल्म सरकार कर रहा है मैम करने दीजिए, उतना हम लोग को सहने के ताकत मजबूत मिल रहा है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, अगर हम न जीते तो झारखंड का भविष्य मर जाएगा, सभी पुलिस वालों को बोलते हैं।
2: Right there where you see is that point where there is a face-off right now between the students on one side and the police which is on the other. A while ago there was a lathi charge, the water cannon was used. Remember what had happened this morning was that the organizers of this protest had said that you have to march from the old Vidhan Sabha towards the new Vidhan Sabha, but it should be done in a peaceful fashion. Somewhere along the way the story changed. The police says that there was aggression on part of the protesters. The marching students say that they were subjected to a lathi charge. One such person is here with me. आप वहाँ से मार्च करते हुए आ रहे थे, फिर क्या हुआ?
10: हम लोग पीसफुल तरीके से मार्च करते आ रहे थे मैम। हम लोग का जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है उस मंच से भी अनाउंसमेंट किया गया था कि हम लोग पीसफुल तरीके से आंदोलन करेंगे, हम लोग शांति मार्च लेकर आ रहे थे और जो एसपी सर से बात हुई थी कि जो आप लोग का जो एरिया है जहाँ पे हम लोग डिसाइड किए हैं बैठने के लिए वहाँ पे बैठ जाइएगा, हम लोग बैठने के लिए हम बच्चे को समझा रहे थे, उसी बीच में इधर से पुलिस की तरफ से पूरा लाठीचार्ज करके जिस तरह से हमको समझाने के दौरान हमको भी चोट लगी है, दो तीन जगह इधर भी पैर में भी मारा है, पीठ में भी देखिए यहाँ भी चोट लगा है, यहाँ भी चोट लगा है, देखिए कट भी गया है। मैम हम बताना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी तरह से हम लोग छात्र हैं और किसी भी
2: आपको पैर में लाठी मारी है?
10: हाँ ये देखिए पूरा लाल है, ये आपका सरकार के द्वारा से हम लोग का जो आंदोलन है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार के जब हम लोग बोल देंगे पीसफुल तरीका से तो लाठी चार्ज करने की क्या जरूरत है?
2: पर वो कह रहे हैं वहाँ से पत्थर चले,
10: हम लोग किसी भी प्रकार से पत्थर नहीं चलाया है मैम, हम लोग जेनुअल छात्र हैं और छात्र में ही तो जो मांग कर रहे हैं वो हम लोग छात्र का ही, हम लोग किसी भी प्रकार पत्थरबाजी न किसी प्रकार से कोई भी डंटा उंटा से हम लोग मारने की है।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: Welcome back. You see, with just 3 days left in the monsoon session, the Parliament's logjam, well, it shows absolutely no signs of easing whatsoever. Opposition leader Rahul Gandhi last evening, once again, he renewed his demand that the Home Minister make a statement in the House. Well, a statement on who ordered the alleged firing on the students and that the Prime Minister must apologise. Rahul Gandhi said that no discussion will take place until these demands are met, these two demands. The government, meanwhile, it's hit out at Rahul Gandhi, with Union Minister J.P. Nadda accusing Rahul of running away from the debate. And he also questioned whether Rahul Gandhi is deaf to the students' plight, further accusing him of creating anarchy. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju, he insists that the government is ready with a detailed response. And well, urged the opposition to have the courage to listen to Home Minister Shah's full statement. Well, shifting our focus, the Jharkhand student protest has entered day 18 after a dramatic escalation during yesterday's march towards the assembly. Protesters faced lathi charge, tear gas and even water cannons as police moved to disperse the crowd, with several protesters, mind you, alleging injuries and excessive use of force by the cops. High drama, needless, was witnessed at the Jharkhand assembly late in the evening when cops were seen lathi charging protesters and also chasing them away. Meanwhile, student leader Devendra Mahato, who, by the way, participated in the protest march as well, despite losing 10 kilos, was hospitalized after his health deteriorated. He says he was pushed and harassed by the cops. The crackdown has also triggered strong reactions from protesters, with allegations now surfacing that even women were not spared during police action. We get you some reactions on the story.
1: आज छात्रों के ऊपर रांची पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता से लाठी चार्ज किया है, उसके बाद से ये जो स्टेडियम है जहां पे इनका इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, उसका माहौल अजीब सा हो गया और ये बच्चा हमें रोते हुए मिल रहा है। बेटा क्या हुआ, पहले ये बताओ।
2: पीछे सर मेरे को, हम लोग साइड पे, जब 3 बजे था, हम लोग तीन बैरिकेड तोड़ दिए थे। मैं साइड पे ही था, हम कोई बैरिकेड नहीं तोड़ा, मैं साइड पे ही था, मैं लास्ट में चल रहा था। 3 बैरिकेड टूट गया था, तो हम लोग साइड पे एक दुकान में बैठ के पूरी बट रहा था, मैं पूरी खा रहा था, सुबह से एक दाना पेट पे नहीं गया था। मेरी माँ कैंसर मरीज, वो बोली थी कि आओ छात्र के सपोर्ट लेना चाहिए हमको, तो आए, हम लोग पूरी खा रहे थे, आ गया पुलिस दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। फिर मारने के बाद टीयर गैस भी छोड़ा गया, आग देखिए सर फूल गया है पूरा, तब मैं चश्मा अपना ही छोड़ दिया था भूल से। मेरी माँ के ऊपर भी टीयर गैस में क्या किया, मम्मी सांस लेने को दिक्कत हो गई, सब कुछ बचा है मिल गया। सर ने अच्छा अपना बर्थडे का गिफ्ट दे दिया हम लोग को, सर बहुत अच्छा हम लोग को गिफ्ट दे दिए।
3: हम आज 17 दिन से सत्याग्रह में, 9 दिन भूख हड़ताल में, और अभी का समय में हमारा जैसे भूखे आदमी को भी पुलिस धक्का मुक्की कर दिया, हमको भी प्रताड़ित कर दिया, और अभी जबरदस्त

0: And here are some glimpses from ground reports.
1: Locals who come here. Now this is the month of Sawan. It is very, very auspicious time, and you've got locals who have come here after going to the temple, and they are putting a tilak with all these people who are now headed out. You know, they are going to the Vidhan Sabha, they are going for a Vidhan Sabha gherao, and they are here, you know, putting that small tilak on the head of all of these young men before they leave this stadium. Ma'am, aapka naam kya hai?
2: Hamara naam Suman Kumari hai aur main Ranchi se hu. और आज सोमवार का दिन है, मैंने सावन पे फास्टिंग रखा है. आज हमारे लिए, इन जेपीएससी के बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन है. आज मैं सुबह उठते साथ भोले बाबा के पास पूजा करते ही अपने भाइयों को, अपने बहनों को आके तिलक देके उन्हें मैं आंदोलन के लिए भेज रही हूँ.
1: तो क्यों, आपको क्यों लगा यहाँ आकर के आप तिलक क्यों लगा रही हैं?
2: भाई लोग जा नहीं सकते हैं तो उनके लिए मुझे आना पड़ा, मुझे आना ज़रूरी था.
1: You've got two of the organizers who are now on top of a barricade, including a young lady. Now they've got on top. We had some unfortunate scenes where the protester had flung slippers. These slippers and shoes had been flung in the direction of the police. So you see a lot of abandoned slippers which have been thrown at the cops over here. But after that, you see the organizers getting on top and asking people to settle down. Don't engage in violence. Don't engage with the police. Don't let things get out of hand. So finally now, things are under control. For a bit there, it looked like the situation was getting tense and the barricades were being broken. But now, the organizers have come and tried to take control of what the situation is like over here. One policeman injured, which we can confirm to you because he was led away right in front of us.
3: मेरा नाम संजय माथुर और हम हजारीबाग से आए हुए हैं. हम जेपीएससी के छात्र हैं.
1: आपको लाठी लगी?
3: लाठी पूरा पैर से माथा तक, माथा इतना जोरदार लाठी था कि मेरा सर पूरा फट गया है.
1: आप कहाँ?
3: हम यहीं थे, यहीं पीछे थे और लाठीचार्ज स्टार्ट कर दी. और पूरा इतना बेरहम नहीं मारना चाहिए, इतना निरंकुश सरकार नहीं होना चाहिए कि झारखंडी छात्र को लाठी से मतलब मारना चाहिए.
1: पर आपने तो कहा था कि आप यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे.
3: ये पीसफुल ही थी, हम लोग कुछ नहीं बोलिए किसी को. आज एक हम लोग हाथ चलाए हैं और ढेला फेंके या किसी तरह से गाली दिए हैं. हम लोग शांतिपूर्ण विधानसभा जा रहे थे मार्च करते हुए और हम लोग को विधानसभा पहुंचे भी नहीं दिया और हम लोग को मार के यही सारा माथा.
1: ये आपके क्या खून लगा हुआ है?
3: खून लगा हुआ है, देख लीजिए आप.
1: क्या आपके आपके ये? All right, so he's showing, he's got a blood-stained cap here.
3: पूरा पूरा देखिए, ये बलर देखिए, मेरा सक देखिए, सक से पूरा बांधे हुए थे. और इस तरह से अगर खंडी छात्र अगर प्रशासन मारेगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मर जाए, हम लोग को हक अधिकार ना चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए.
1: आपका नाम?
4: चंडी तिवारी मैम नाम है मेरा.
1: चंडी बताइए क्या हुआ?
4: जितना जुल्म सरकार कर रहा है मैम, करने दीजिए, उतना हम लोग को सहने के ताकत मजबूत मिल रहा है. लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, अगर हम न जीते तो झारखंड का भविष्य मर जाएगा. सभी पुलिस वालों को बोलते हैं.
1: Right there where you see is that point where there is a face-off right now between the students on one side and the police, which is on the other. A while ago, there was a lathi charge, the water cannon was used. Remember, what had happened this morning was that the organizers of this protest had said that you have to march from the old Vidhan Sabha towards the new Vidhan Sabha, but it should be done in a peaceful fashion. Somewhere along the way, the story changed. The police says that there was aggression on part of the protesters. The marching students say that they were subjected to a lathi charge. One such person is here with me. आप वहाँ से मार्च करते हुए आ रहे थे, फिर क्या हुआ?
5: हम लोग पीसफुल तरीके से मार्च करते आ रहे थे मैम. हम लोग का जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है, उस मंच से भी अनाउंसमेंट किया गया था कि हम लोग पीसफुल तरीके से आंदोलन करेंगे. हम लोग शांति मार्च लेकर आ रहे थे और जो एसपी सर से बात हुई थी कि जो आप लोग का जो

0: एरिया है जहाँ पे हम लोग डिसाइड किए हैं बैठने के लिए, वहाँ पे बैठ जाइएगा। हम लोग बैठने के लिए हम बच्चे को समझा रहे थे, उसी बीच में इधर से पुलिस की तरफ से पूरा लाठी चार्ज करके जिस तरह से हमको समझाने के दर में हमको भी चोट लगी है, दो तीन जगह इधर भी है, पैर में भी मारा है, पीठ में भी, देखिए यहाँ भी चोट लगा है, यहाँ भी चोट लगा, देखिए कट भी गया है। मैम हम बताना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी तरह से, हम लोग छात्र हैं और किसी भी,
1: आपको पैर में लाठी मारी है?
0: हाँ, ये देखिए पूरा लाल है। ये आपका सरकार के द्वारा से हम लोग का जो आंदोलन है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार के जब हम लोग बोल दिए कि पीसफुल तरीका से, तो लाठी चार्ज करने की क्या जरूरत है?
1: पर वो कह रहे हैं वहाँ से पत्थर चले।
0: हम लोग किसी भी प्रकार से पत्थर नहीं चलाया है मैम, हम लोग जेनुअल छात्र हैं और छात्र में ही तो जो मांग कर रहे हैं वो हम लोग छात्र का ही, हम लोग किसी भी प्रकार पत्थरबाजी न किसी प्रकार से कोई भी डंटा उंटा से हम लोग मार नहीं किया।

0: front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
1: War-struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
2: In the Kargil area.
1: North Ukraine. In France. In Italy.
3: At Srinagar.
1: I am Srinagar.
4: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
5: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है
6: ब्रेकफास्ट आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
5: आप कहाँ से हैं?
6: हरियाणा। कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
5: डेढ़ महीने पे।
6: आपकी फैमिली है?
5: और
6: बच्चे हैं? तीन साल। मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
5: बहुत।
6: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
5: श्रीनगर तक अलाउड।
6: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
5: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: I take you to Jharkhand, where the student protest has entered day 18 after a dramatic escalation during yesterday's march towards the state assembly. You see, protesters faced lathi charge, tear gas and water cannons as cops moved to disperse the crowd, with several protesters alleging injuries and forced by the police. High drama was witnessed at Jharkhand assembly late in the evening, with cops seen lathi charging protesters, as you see right next to me, chasing them away. Meanwhile, student Rendra Mahato, who participated in the protest march as well, was hospitalized after his health deteriorated. He says pushed and harassed by the cops. Serious allegations coming in from the student leader. Meanwhile, the crackdown has also triggered strong reactions from protesters, with allegations that even women were not spared during the police crackdown. Listen in.
1: आज छात्रों के ऊपर रांची पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता से लाठी चार्ज किया है, उसके बाद से ये जो स्टेडियम है जहाँ पे इनका इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, उसका माहौल अजीब सा हो गया और ये बच्चा हमें रोते हुए मिल रहा है। बेटा क्या हुआ, पहले ये बताओ।
2: पीछे सर मेरे को, हम लोग साइड पे जब 3 बजे था, हम लोग तीन बैरिकेड तोड़ दिए थे। मैं साइड पे ही था, हम कोई बैरिकेड नहीं तोड़ा, मैं साइड पे ही था, मैं लास्ट में चल रहा था। 3 बैरिकेड टूट गया था, तो हम लोग साइड पे एक दुकान में बैठ के पूरी बट रहा था, मैं पूरी खा रहा था। सुबह से एक दाना पेट पे नहीं गया था। मेरी माँ कैंसर मरीज जो बोली थी कि आओ छात्र के सपोर्ट लेना चाहिए हमको, तो आए, हम लोग पूरी खा रहे थे। आ गया पुलिस, दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। फिर मारने के बाद टीयर गैस भी छोड़ा गया, आग देखिए सर फूल गया है पूरा। तब मैं चश्मा अपना ही छोड़ दिया था पूरे। मेरी माँ की उम्र भी टीयर गैस में क्या किया, मम्मी जाने को दिक्कत हो गई, सब कुछ बचाया। अहमद सर ने अच्छा अपना बर्थडे का गिफ्ट दे दिया हम लोग को, सर बहुत अच्छा हम लोग गिफ्ट दे दिए।
3: हम आज 17 दिन से सत्याग्रह में, 9 दिन भूख हड़ताल में, और अभी का समय में हमारा जैसे भूखे आदमी को भी पुलिस धक्का मुक्की कर दिया, हमको भी प्रताड़ित कर दिया, और अभी जबरदस्ती हमको एम्बुलेंस में डाल दिया। ये स्थिति है, ये विडंबना है, लेकिन मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगा, इस लड़ाई को मैं कंटिन्यू रखूंगा।
0: Rather disturbing visuals coming from Jharkhand there. Meanwhile, it was a day of high drama, as you saw in Ranchi yesterday, as protesting students marched towards the state assembly, braving lathi charge, water cannons and even tear gas. NDTV's managing editor Padmaja Joshi, she was also there on the ground, right in the thick of things, capturing the action as it unfolded. Here are glimpses from a ground report.
4: Who come here. Now this is the month of Savan. It is very, very auspicious time, and you've got locals who have come here after going to the temple, and they are putting a tilak with all these people who are now headed out. You know, they are going to the Vidhan Sabha, they are going for a Vidhan Sabha gherao, and they are here, you know, putting that small tilak on the head of all of these young men before they leave this stadium. Ma'am, aapka naam kya hai?
5: Hamara naam Suman Kumari hai, aur main Ranchi se hu. और आज सोमवार का दिन है, मैंने सावन पे फास्टिंग रखा है। आज हमारे लिए, इन JPSC के बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मैं सुबह उठते साथ भोले बाबा के पास पूजा करते ही अपने भाइयों को, अपने बहनों को आके तिलक दे के उन्हें मैं आंदोलन के लिए भेज रही हूँ।
4: तो क्यों, आपको क्यों लगा यहाँ आकर के आप तिलक क्यों लगा रही हैं?
5: भाई लोग जा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए मुझे आना पड़ा, मुझे आना ज़रूरी था।
4: You've got two of the organizers who are now on top of a barricade, including

0: young lady. Now, they've got on top. We had some unfortunate scenes where the protester had flung slippers. These slippers and shoes had been flung in the direction of the police. So you see a lot of abandoned slippers which have been thrown at the cops over here. But after that, you see the organizers getting on top and asking people to settle down. Don't engage in violence. Don't engage with the police. Don't let things get out of hand. So finally now, things are under control. For a bit there, it looked like the situation was getting tense and the barricades were being broken. But now, the organizers have come and tried to take control of what the situation is like over here. One policeman injured, which we can confirm to you, because he was led away right in front of us.
1: मेरा नाम संजय मातो और हम हजारीबाग से आए हुए हैं. हम जेपीएससी के छात्र हैं.
0: आपको लाठी लगी?
1: लाठी पूरा पैर से माथा तक, माथा तक इतना जोरदार लाठी था कि मेरा सर पूरा फट गया है.
0: अरे आप कहाँ?
1: हम यहीं थे, यहीं पीछे थे और लाठीचार्ज स्टार्ट कर दी. और पूरा इतना बेरहम नहीं मारना चाहिए, इतना निरंकुश सरकार नहीं होना चाहिए कि झारखंडी छात्र को लाठी से मतलब मारना चाहिए.
0: और आपने तो कहा था कि आप यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे.
1: ये पीसफुल ही थी, हम लोग कुछ नहीं बोलिए किसी को. आज एक हम लोग हाथ चलाए हैं और ढेला फेंके या किसी तरह से गाली दिए हैं. हम लोग शांतिपूर्ण विधानसभा जा रहे थे मार्च करते हुए और हम लोग को विधानसभा पहुंचे भी नहीं दिया और हम लोग को मार के यही माथा.
0: ये आपके क्या खून लगा हुआ है?
1: खून लगा हुआ देख लीजिए आप.
0: क्या आपके आपके ये? All right, so he's showing, he's got a blood-stained cap here.
1: पूरा पूरा देखिए, ये ब्लड देखिए, मेरा शर्ट देखिए, शर्ट से पूरा बांधे हुए थे. और इस तरह से अगर खनी छात्र अगर प्रशासन मारेगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मर जाए. हम लोग को हक अधिकार ना चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए.
0: आपका नाम?
2: चंडी तिवारी मैम नाम है मेरा.
0: चंडी बताइए क्या हुआ?
2: जितना जुल्म सरकार कर रहा है मैम, करने दीजिए, उतना हम लोग को सहने के ताकत मजबूत मिल रहा है. लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, अगर हम ना जीते तो झारखंड का भविष्य मर जाएगा. सभी पुलिस वालों को बोलते हैं.
0: Right there where you see is that point where there is a face-off right now between the students on one side and the police, which is on the other. A while ago, there was a lathi charge. The water cannon was used. Remember, what had happened this morning was that the organizers of this protest had said that you have to march from the old Vidhan Sabha towards the new Vidhan Sabha, but it should be done in a peaceful fashion. Somewhere along the way, the story changed. The police says that there was aggression on part of the protesters. The marching students say that they were subjected to a lathi charge. One such person is here with me. आप वहाँ से मार्च करते हुए आ रहे थे, फिर क्या हुआ?
3: हम लोग पीसफुल तरीके से मार्च करते आ रहे थे मैम. हम लोग का जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है, उस मंच से भी अनाउंसमेंट किया गया था कि हम लोग पीसफुल तरीके से आंदोलन करेंगे. हम लोग शांति मार्च लेकर आ रहे थे और जो एसपी सर से बात हुई थी कि जो आप लोग का जो एरिया है जहाँ पे हम लोग डिसाइड किए बैठने के लिए, वहाँ पे बैठ जाइएगा. हम लोग बैठने के लिए हम बच्चे को समझा रहे थे, उसी बीच में इधर से पुलिस की तरफ से पूरा लाठी चार्ज करके जिस तरह से हमको समझाने के दर में हमको भी चोट लगी है. दो तीन जगह इधर भी है, पैर में भी मारा है, पीठ में भी देखिए, यहाँ भी चोट लगा है, यहाँ भी चोट लगा, देखिए कट भी गया है. मैम हम बताना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी तरह से, हम लोग छात्र हैं और किसी भी
0: आपको पैर में लाठी मारी है.
3: हाँ ये देखिए पूरा लाल है. ये आपका सरकार के द्वारा से हम लोग का जो आंदोलन है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है. सरकार के जब हम लोग बोल दिए कि पीसफुल तरीका से, तो लाठी चार्ज करने की क्या जरूरत है?
0: पर वो कह रहे हैं वहाँ से पत्थर चले.
3: हम लोग किसी भी प्रकार से पत्थर नहीं चलाया है मैम. हम लोग जेनुअल छात्र हैं और छात्र में ही तो जो मांग कर रहे हैं वो हम लोग छात्र का ही. हम लोग किसी भी प्रकार पत्थरबाजी न किसी प्रकार से कोई भी डंटा उंटा से हम लोग मारने की है.
4: Well, the political fallout is only escalating. In the latest week, picking up that Congress's overseas advisor, Sam Pitroda, he's now waded into the Ranchi protest controversy. He has said that images from Ranchi disturb me deeply. Not that he's also demanded answers to youth's frustration, has underlined can't be lathis. He can't believe that lathis have been used at students. He goes on further to say that students are not the enemy. Not only this, he's expressed solidarity with Jharkhand youth, essentially slamming the Jharkhand government. My colleague Aishwarya remains with me for more on this story. Aishwarya, the fallout, political fallout, only increasing with now voices also coming in from Congress's own close quarters here.
5: Well, that's right. Just yesterday, it was Leader of Opposition Rahul Gandhi during that press conference when asked that what is his views on the students' protest that is taking place in the state of Jharkhand. He clearly condemned the kind of violence that have taken place yesterday, the lathi charge that was done against the students, and he stated that there is no place for violence when there is a peaceful protest that is going on, and we don't stand by the kind of action that the Jharkhand government has taken. In fact, Rahul Gandhi yesterday went on to say that it is either of the governments. The peaceful protest should not be dealt with violence, and therefore the Congress party is very clear in their mind that this is something that should be condemned. Champ Pitroda, very close to the Gandhis, now clearly expressed solidarity with the Jharkhand youth. Perhaps many of the Congress leaders have not spoken on the entire issue. In fact, the delegation of the Congress party did not reach out to the students as well for a very long time. And now Sam Pitroda clearly questioning their own government. Remember, the Congress party is in the alliance with the Jharkhand Mukti Morcha in the state of Jharkhand. And therefore, the reason perhaps the Bharatiya Janata Party had attacked the Congress and JMM and stated that why not Rahul Gandhi sits outside the residence of Hemant Soren while here in Delhi, he had gone and sat outside the residence of Prime Minister Narendra Modi. It is a double standard of the Congress party that clearly can be seen as far as the students' protest is concerned. On the other side, it is the CBI inquiry that the Bharatiya Janata Party has been also asking in the entire protest.
4: Absolutely, that CBI inquiry remains the bone of contention as the political rises, as my colleague Aishwarya was just explaining. Thank you so much, Aishwarya, once again. Meanwhile, we're also picking up breaking news that CJP's Abhijit Deepke, he's backed the Jharkhand student protests. Going further, he's alleged he's levied some serious allegations against the Jharkhand cops. He said Devendra Mahato was lathi charged before hospitalization. Big accusation coming in from CJP's Abhijit Deepke there. Not only this, he's also alleged that Mahato suffered injuries because of that alleged lathi charge, experiencing chest pains. Not only this, he's also called the police action against the students as cruel and underlined that the CJP or the Cockroach Janata Party stands with Devendra Mahato and the protesting students. Meanwhile, my colleague Haribansh joins us for more on this story. Haribansh, what's the latest you can tell us, first of all, on Devendra Mahato's condition and all these serious allegations that are in fact being levied by CJP's Abhijit Deepke?
6: देखिए देवेंद्र महतो पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पे थे. जब छात्रों का जो है कल विधानसभा घेराव हुआ, जब छात्र आगे बढ़ गए, उसके बाद देवेंद्र महतो फोर्थली जो है प्रशासन उनको नहीं चाहती थी ले जाना, लेकिन वो उनके दबाव के बाद जो है एम्बुलेंस में रख के उनको विधानसभा लाया गया और वो लगातार आंदोलन किए. उस छात्रों के साथ आंदोलन में वो शरीक हुए. जब शाम का समय था, जब प्रोटेस्ट करने वाले कुछ लोग निकल रहे थे, लेकिन देवेंद्र महतो जो छात्र नेता है, जो पिछले हंगर स्ट्राइक पे थे, उन्होंने कहा कि अब सरकार जब तक मेरी मांग को नहीं मानेगी तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगा. यानी कि उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं अब विधानसभा के बाहर जो बैठा हूं तो यहीं पर बैठूंगा जब तक सरकार हमारी डिमांड को पूरा नहीं करती है. उसके बाद
4: लगाए हैं ये जो एलिगेशंस लगाए हैं सीजीपी के अभिजीत दीपके ने कि देवेंद्र मातो को लाठी चार्ज हुआ था, उन्हें मारा गया था और उनके चेस्ट में भी दर्द है बिकॉज ये लाठी चार्ज उन पे हुआ था. इस पे लेटेस्ट हमें आप क्या बता सकते हैं?
6: देखिए, जब पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया जा रहा था तो उनको सुरक्षित निकालने की कोशिश की गई थी कि जल्द से जल्द इनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, लेकिन उसी बीच में कुछ पुलिस वालों के तरफ से जो है तो उनको ये लाठी पड़े हैं, पिटाई हुई है, लेकिन किस तरह की हुई तो क्योंकि अंधेरा था कुछ पता नहीं चल पाया है. अभी वो रांची के सदर हॉस्पिटल में भर्ती हैं जहां उनका इलाज चल रहा है. और हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि अभी आपको कुछ भी किसी से बात नहीं करना है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि उनको कितनी कल चोटें लगी हैं, किस तरह से जो घटना जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें शामिल थे, पुलिस उनको निकालने के दौरान उनको कहां कहां चोटें लगी।
4: हरिवंशी, धन्यवाद आपका ये इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए हमारे साथ, और हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर आ रही है, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। व्यूअर्स, वी गेटिंग अ ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन, इट्स द झारखंड एलओपी बाबूलाल मरांडी नाउ हु इज टारगेटेड द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट। व्हाट इज ही सेड दैट द स्टूडेंट एजिटेशन इज नॉट जस्ट 15 डेज ओल्ड, स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग अ सीबीआई प्रोब एंड ही इज अलेजिंग दैट द गवर्नमेंट यूज्ड पेटेंट्स इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग अ सीबीआई प्रोब एज इट शुड हैव। Going on further, he said that Rahul Gandhi is simply trying to save face, targeting the Congress leader Rahul Gandhi there. We'll go back to Hariwansh, but meanwhile, listen in to what Babulal Mirandi is alleging.
7: देखिए, हम लोगों तो सवेरे से उठा करके खेल गांव में रखे हुए हैं और पिछले 15-16 दिनों से छात्र धरना पर है, भूख हड़ताल पर है और ये आंदोलन पिछले 15 दिनों से नहीं, हमको आज इतनी रात को हमको और अध्यक्ष जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हेमंत सोरेन कोई छोटी बात समझ में आनी चाहिए।
4: My colleague Hariwansh remains with us. Hariwansh, हमने सुना अभी ये बाबूलाल मरांडी को ये कह रहे हैं कि सीबीआई प्रोब करने में दिक्कत क्या है हेमंत सोरेन को?
6: इस सरकार जब वार्ता हुई थी और वार्ता के बाद जो है जब सीबीआई के जो जांच की मांग को लेके जब छात्र का ये कहना था कि हमारी सीबीआई से मांग कराइए, जब सरकार नहीं मांगी उसके बाद विपक्ष जो है इसमें एंट्री हुई है और उसके बाद बाबूलाल लगातार मुखर होके ये सरकार से डिमांड कर रहे हैं। विधानसभा में भी उन्होंने डिमांड किया था कि आखिर सरकार जो है छात्रों की मांग को क्यों नहीं पूरा करता है। तो ये आंदोलन जो है अब जो सड़क से जो आंदोलन शुरू हुआ था वो सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुका है। एक तरफ छात्र भी सीबीआई की मांग कर रहे हैं और विपक्ष भी उनका साथ दे रही है और अब देखना जो अब सबसे बड़ा जो सवाल ये पैदा होता है कि क्या छात्र जो है जो सरकार जो है वो छात्रों की सीबीआई की जांच का डिमांड पूरा करती है या नहीं करती है। इसको लेके कल जो प्रोटेस्ट था, जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेके आज झारखंड बीजेपी ने बंद कॉल का, पूरे झारखंड बंद कॉल का बुलाया है। तो सरकार की डिमांड, सरकार जो छात्रों की जो डिमांड है वो पूरी नहीं होने का
4: बड़ा सवाल यही है। जैसे आप बता रहे थे कि सोरेन गवर्नमेंट, झारखंड सरकार अब स्टूडेंट्स की डिमांड मानती है, सीबीआई प्रोब कराती है या नहीं कराती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन माय कलीग हरिवंश, लाइक ऑलवेज गेटिंग अस द लेटेस्ट। Meanwhile, viewers, the protest crackdown you see on student protesters in Ranchi yesterday, it sparked an all-out political face-off. CM Hemant Soren, he lauded the police officials, on the other hand, saying that they showed restraint and acted responsibly. Not only this, he also had students to not fall into any political narrative. That's what he calls it. Meanwhile, Rahul Gandhi, however, he's condemned the crackdown and urged the Hemant Soren government to hear the students out and resolve their concerns through dialogue and not through batons and lathi charges. Congress MP Chidambaram has also joined Rahul Gandhi in condemning Ranchi police's action. BJP, meanwhile, it's stepped up the attack on Rahul Gandhi here. The BJP is accusing Rahul Gandhi of showing double standards. It's also targeting him over his absence from the ground. The BJP has also called for a statewide bun today over police action on students. We get you all the latest reactions coming in.
8: झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। We condemn any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening. We condemn it. We are against it. We do not recommend it. We do not support it. We are very clear. कोई confusion नहीं हमारे mind में। तो peaceful जब तक protest हो रहा है, कब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना, उसके खिलाफ है।
9: आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं, उनके इशारे पर जिस जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल हैं वो सरकार वहां चला रहे हैं, क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनाती है, उनका कोई भी देश के भविष्य के लिए और देश के आगे ठीक ढंग से चले इसमें अराजकता पैदा करना, नकारात्मक राजनीति लाना, गैर जिम्मेदाराना

0: मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है ये।
1: कुछ इससे भी अनोखा
0: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.
4: Hindustan mile, Hindustan se.
5: Desh ka tire, JK tire.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा,

0: Sí.
1: देश का टायर जेके टायर।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन ना बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है। जब तक लाजवाब ना बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमैन बनना नहीं आसान है।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
2: रियली
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: हाउ?
1: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे,
2: इट्स द माही वे।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: लोगों के पास है
1: कुछ इससे भी अनोखा।
0: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड
3: रियली
2: योर

0: mobile recharge is done.
1: How?
0: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
1: It's the Mahi way.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा, सबका राजा आकर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
5: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
6: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
7: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
8: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है। जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
9: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज़।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.
4: Hindustan mile, Hindustan se.
5: Desh ka tire, JK tire.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service. Modo Elite.

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.
1: And a new controversy that has erupted in the state of Tamil Nadu is the finance minister's comments that haven't gone

0: स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के लिए, वो केवल जंतर मंतर तक ही सीमित था क्या? झारखंड के स्टूडेंट्स क्या देश के स्टूडेंट्स नहीं है? आपको याद कराना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी की साझेदारी है सरकार में, और स्टूडेंट्स से आपसे अपेक्षा है कि किसी प्रकार की कार्रवाई होगी। या तो आप मौन साध लेते हैं, या फिर जब बोलते हैं तो इतना ज्यादा ग्लॉस्ड ओवर बयान देते हैं जिसका ना सर होता है ना पैर। राहुल गांधी जी, बयानबाजी में मत उलझिए, कार्रवाई करवाइए। धन्यवाद।
1: At the Makadwar of the Parliament, and there you can see the placards that these MPs are holding. Jharkhand में छात्रों पर हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो। सर, कल राहुल गांधी ने कहा कि वो इस पूरे प्रदर्शन में जो भी हिंसा हुई है उसको कंडम करते हैं, आप किस तरीके से
2: जवाब दो?
3: देखिए, राहुल गांधी जी कभी भारत का भला चाहते ही नहीं है। उनकी दो तरफा नीति है, जिस प्रकार से वो छात्रों को अगर भविष्य की चिंता करते तो पूरे देश में उसके लिए वो इश्यू होता, लेकिन आज जिस ढंग से वो सदन में राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष की सकारात्मक भूमिका कहीं नजर नहीं आ रही है और इसको इस देश की जनता देख रही है। उन्हें मुद्दों पे चर्चा करना है, उसके लिए सदन है, न कि वो जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं उनसे बचकाना हरकतें उनकी नजर आती है और इस देश की जनता कभी उनको सीरियसली नहीं लेती है।
1: यू हर्ड फ्रॉम दी एनडीए एमपीज ओवर हियर क्लियरली प्रोटेस्टिंग ओवर हियर, झारखंड में छात्रों पर हुई क्रूरता पर राहुल गांधी जवाब दो, ये मांग कर रहे हैं आप। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम कंडम करते हैं, किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए।
4: वहाँ के झारखंड में छात्र बड़े शांति पूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी जायज मांगों को मांग रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा जो उनके साथ जास्ती की गई वो बहुत ही निंदनीय है, और राहुल गांधी जी को और उनकी सरकार को, वहाँ के मुख्यमंत्री को जी को जवाब देना चाहिए कि छात्रों शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जो हिंसा की गई वो अन्यायपूर्ण है और अलोकतांत्रिक है, और उनको इस विषय पे आगे जवाब देना चाहिए। जहां राहुल गांधी जी और कांग्रेस सदन में अवरोध पैदा करते हैं, किसी भी चर्चा करने को तैयार नहीं है और दोहरी राजनीति चल के इस तरह का काम करते हैं, और प्रयागराज तो वो जाते हैं लेकिन झारखंड जाने की उस पर कुछ कहने की उनकी उनकी हिम्मत नहीं हुई, ये उनका दोहरा चरित्र है।
1: You heard from the MPs of the NDA block over here clearly protesting with the posters in their hands and clearly demanding answers from the Congress party over here. Rahul Gandhi, bhago mat, charcha karo, these are the placards that they are holding. It seems that the deadlock that continues because the NDA MPs now clearly demanding answers from Rahul Gandhi. On the other side, it is the opposition MPs which are stating that we want answers on who gave the orders in Delhi the alleged brutality against the students have taken place. Ashwarya Jain for NDTV in Parliament.
5: आज पुनः गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, और कल पूरे दिन झारखंड में जिस प्रकार से बच्चों के ऊपर, जेन जी के ऊपर, छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई है, और खास करके महिलाओं के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, लड़कियां जिस प्रकार बिलक बिलक कर रो रही हैं, जिस प्रकार से गुहार लगा रही है, जवाब कौन देगा? क्या राहुल गांधी जो झारखंड के सरकार में शामिल है उनकी हिम्मत है कि वो समर्थन वापस लेंगे? आज हम जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी, यदि आप कल्पेबल हैं, आपके आधार पर लाठी चार्ज हुआ है झारखंड में, आपके कहने पर बर्बरता हुई है झारखंड में, तो आप आज झारखंड से, आप सरकार से अपनी समर्थन को वापस लीजिए।
1: द्वार वेर साइमल्टेनियसली द एनडीए एमपीज एंड द ऑपोजिशन एमपीज आर प्रोटेस्टिंग एंड देयर आर एसआरपीएफ पर्सन्स हु आर क्लियरली क्रिएटिंग लाइन इन बिटवीन एज फार एज द एमपी आर कंसर्न्ड एंड मोदी शाह, सो सॉरी टू द नेशन, इट इज द कांग्रेस एमपीज एंड ऑन द अदर साइड द राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो कंडम करते हैं झारखंड के वॉयलेंस को लेकर, उधर एनडीए कह रही है कि आप
2: लोग क्यों नहीं जाते हैं?
6: वो हमने तो कहा कि देश में जहां भी शासन के खिलाफ अन्याय होगा हम उसका खंडन करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। झारखंड में अगर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो ये सरकार को माफी मांगनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन पहले देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी माफी मांगे जो पायलट गन बच्चों को चलाई।
7: Right, Aishwarya, getting us, you know, the reactions coming about from the NDA MPs, the demands that are being raised in connection with an investigation. That's what we heard, Bansuri Swaraj, you know, demanding an investigation into the matter as far as the students' demands are concerned. Kangana Ranaut also raising concerns about, you know, what is really taking place in Jharkhand. And then, of course, we had other NDA leaders, you know, compare Rahul Gandhi, saying that, you know, while he can raise his voice here in the national capital as to what happened in Jantar Mantar, but what about doing the same when it happens to Jharkhand, and in fact calling him childish and saying that, you know, he needs to in fact be serious about the situation that is unfolding in the state of Jharkhand. While Hemant Soren has gone ahead and said that they're very serious when it comes to the demands that are being made as far as a CBI probe into the matter is concerned, they are in fact very willing to listen to what the students really want, what their demands are. In fact, there have been three rounds of talks that have taken place, but nothing has materialized so far. We also had the health minister reach the hospital where Mr. Mahato, Devendra Mahato, who has been on that indefinite fast and did also participate in the protest yesterday, was then taken to the hospital, the Sadar Hospital in Ranchi, while the health minister went and met with him. In fact, let's just listen in to what Nishikant Dubey is saying on the matter.
8: ये जो मानसिकता है राहुल गांधी की, वो दुनिया के सामने expose हो गई है। आप ये समझिए कि देवेंद्रनाथ महतो जो अनशन पर है, उसको कल पीटा, रात में पीटा। जो अधिकारी वहाँ पोस्ट किया हुआ है, वो पागल अधिकारी है। वो कभी चुनाव आयोग से लड़ रहा है, कभी वो ईडी के अधिकारियों को जेल में भेज रहा है। और जो धर्मेंद्र है मुख्य आरोपी, उसकी गिरफ्तारी जो है, जो झारखंड सरकार के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनके घर से हुआ है, तो इसकी सीबीआई जांच होगी ना, सीआईडी तो उनके कंट्रोल में है। तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी का जो ये दोहरा चरित्र है, ये लोगों के सामने आ गया है और उसी को एक्सपोज करने आज पूरी पार्टी रोड पर है।
9: ऐसे विपक्ष के नेता की तरह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जवाब दे रहे हैं, ग्लॉस ओवर करते हैं वो अपने बयानों में। वो ये भूल रहे हैं कि झारखंड में के छात्रों को जवाब नहीं चाहिए। राहुल गांधी शायद भूल रहे हैं कि झारखंड में उनकी साझेदारी है सरकार में, छात्रों को बयान नहीं कार्रवाई चाहिए।
1: On one side, Rahul Gandhi yesterday stated that he condemns the violence against the student. Peaceful protest should go on. How do you react to that?
10: See, the double standard of Rahul Gandhi is extremely clear. I mean, we know that Rahul Gandhi's Congress party is a supporter of the Jharkhand Mukti Morcha government, which is in place in Jharkhand. So, of course, if there is lathi charge that's taken place, if there is brutality, which we have seen in the television, brutality that has taken place against the protesting students, students are protesting peacefully, it has taken place in Jharkhand, lathi charge has happened. So either Rahul Gandhi is not competent or he is the one who is culpable, because under his orders all of this has happened. So of course Mr. Rahul Gandhi should come out and should give a statement. He should say that he would withdraw support of the Congress party from the government in Jharkhand, and that he will not stand with what has happened against the student. And secondly, Rahul Gandhi's and Congress Party's demand was that other new Home Minister Shri Amit Shah ji have a discussion on students on the floor of Parliament, to which Mr. Kiran Rijiju gave a bite yesterday. On the floor of the House also, he reassured that there will be a complete threadbare discussion on the issue of the student protest and the Mantri Amit Shah ji will give a detailed statement as to what was the chronology and what was happening. But Rahul Gandhi today is absent. Rahul Gandhi did not allow the house to function. This kind of irresponsibility of Rahul Gandhi is something for which the country demands answers from Rahul Gandhi.
11: Mr. Patra, Rahul Gandhi stated that we do not want

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा। सबका राजा आतेर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: जाते हैं जब
1: उन्हें तुरंत हमने तो कहा कि देश में जहां भी छात्रों के खिलाफ अन्याय होगा हम उसका खंडन करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। झारखंड में अगर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो ये सरकार को माफी मांगनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी माफी मांगे जो पायलट गन बच्चों को चलाई।
2: So as you can see, these Congress MPs on one side protesting over here, and it's a kind of ruckus that we are witnessing at the Makar Dwar with NDA and the Congress MPs clearly clashing between each other as far as the entire protest is concerned. So huge drama unfolding at Makar Dwar after the NDA parliamentary party meeting. The NDA MPs arrived over here and protested, while the opposition MPs protested as well. Ashwari Jain from the Parliament for NDTV.
3: One side, Rahul Gandhi yesterday stated that he condemns the violence against the student. Peaceful protest should go on. How do you react to that?
4: See, the double standard of Rahul Gandhi is extremely clear. I mean, we know that Rahul Gandhi's Congress party is a supporter of the Jharkhand Mukti Morcha government, which is in place in Jharkhand. So, of course, if there is lathi charge that has taken place, if there is brutality, which we have seen in the television, brutality that has taken place against the protesting students, students are protesting peacefully. It has taken place in Jharkhand. Lathi charge has happened. So either Rahul Gandhi is not competent, or he is the one who is culpable, because under his orders all of this has happened.
5: विपक्ष के पास कोई रणनीति नहीं है, उनके पास सिर्फ खलमंडल नीति है। उनका उद्देश्य सार्थक बहस सदन के पटल पर करना नहीं है, उनका उद्देश्य सिर्फ अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करना है। इसीलिए जब गृहमंत्री जी जवाब देने को तैयार है तब वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को सदन में आके सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए। न वो रांची जा रहे हैं न सदन में सुन रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा, उनकी स्थिति यह है जब जो बात मांग ली जाती है वो उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह है जिसे कोई बात सुननी नहीं है। तो उनके लिए, राहुल गांधी के लिए मैं कहना चाहूंगा, होंगे राजे राजकुंवर ये बिगड़े दिल शहजादे, और पीएम एचएम जब जब आए तब ये सदन से भागे।
6: इस दिन बच्चों पर लाठीचार्ज हुई, उसी शाम को उन्होंने खंडन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह दो हफ्ते बाद इंस्टाग्राम का रील नहीं बनाया, उसी दिन उसी समय खंडन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह धर्मेंद्र प्रधान जी को बचाने की लाख कोशिश नहीं की। आज भी धर्मेंद्र प्रधान जी और ये सरकार, वे छात्रों जो जंतर मंतर पे थे, उनकी छवि को उनकी छवि को उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे। क्या हम नहीं देख रहे वे बच्चियां जो राहुल गांधी जी से मिले और कह रहे हैं कि किस प्रकार की गाली उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी, जब आप पर गाली आती है तो आपको चोट पहुंचती है, लेकिन आज भी वे जंतर मंतर पे उपस्थित बच्चियों पर जो गालियां पड़ रही हैं उस पे आप भी शांत हैं।
7: दोनों मुद्दों पे हम चाहते हैं स्टेटमेंट्स हो, और होम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि वो आए सदन में और स्टेटमेंट दे, क्योंकि अब जहां आरटीआई फाइल हुई है वहां पे भी पता चला है कि कम से कम 10 बच्चों को पायलट्स गन से इंजरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही थी कि पायलट्स गन्स नहीं चली हैं, तो ये तो साफ दर्शाता है कि सरकार झूठ बोल रही थी। और उसी के साथ सरकार ने कहा था कि आप कोई भी बच्चों पे एफआईआर नहीं करेंगे, तो आप जीरो एफआईआर कैसे फाइल करते हैं 15 साल की बच्ची पे 25 साल की उम्र दिखाकर? तो ये सब चीजें हैं, और चंदा चोरी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है जो डेफिनेटली सरकार को इस पर भी जवाब देना चाहिए।
8: ये जो मानसिकता है राहुल गांधी की, वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है। आप ये समझिए कि देवेंद्रनाथ महतो जो अनशन पर है, उसको कल पीटा, रात में पीटा। जो अधिकारी वहां पोस्ट किया हुआ है वो पागल अधिकारी है, वो कभी चुनाव आयोग से लड़ रहा है, कभी वो ईडी के अधिकारियों को जेल में भेज रहा है। और जो धर्मेंद्र है मुख्य आरोपी, उसकी गिरफ्तारी जो है, जो झारखंड सरकार के सबसे बड़े अधिकारी है, उनके घर से हुआ है। तो इसकी सीबीआई जांच होगी ना, सीआईडी तो उनके कंट्रोल में है। तो मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी का जो ये दोहरा चरित्र है, ये लोगों के सामने आ गया है, और उसी को एक्सपोज करने आज पूरी पार्टी रोड पर है।
0: Let's go straight across to Aishwarya Jain, who's joining us from outside the parliament. Aishwarya, once again, ruckus inside. Now, both Lok Sabha and Rajya Sabha adjourned. Politics over protests. Now, NDA, while holding those protests, is also bringing Jharkhand student protests into this debate that police had used force there yesterday. But what are the allegations against the Jharkhand government that the BJP and NDA leaders are bringing up? And what are some of the demands that have been placed by NDA as far as these student protests in Jharkhand is concerned?
9: The opposition party members clearly protested outside the parliament, and today it was a new poster that the opposition parties brought in. It was still yesterday, the opposition MPs used to say, Gruh Mantri, Sadan mein aao, charcha ke baad bhago. In fact, today it went a little further, and the opposition MPs clearly stated that Rahul Gandhi se Gruh Mantri charcha se mat bhagiye, and these were the kind of sloganing that was taking place outside the parliament as far as the entire protest is concerned. Now, the government has moved one step forward. They have admitted the demand of the opposition MPs that there should be the discussion that should take place inside the house as far as the protest is concerned, be just of Jantar Mantar, but also the protests taking place in the state of Jharkhand as well. The NDA MPs clearly stated that it's a double standard of the Congress leader Rahul Gandhi. On one side, he is speaking about the students' protest that went in the national capital, but he's completely silent on the students' protest as far as the Jharkhand state is concerned. Altogether, yesterday in the press conference, Rahul Gandhi mentioned that he condemns any kind of violence against the students' protest until and unless the protest goes peacefully. But it is the Bharatiya Janata Party MPs who have been challenging Rahul Gandhi that why not, if you can go to sit and stage dharna outside Prime Minister's residence, why can't you go to Ranchi and meet the students who are beaten up by the police and those who have been hospitalized? Why these double standards that once you can reach to Prayagraj, why not you can reach to Ranchi? But certainly the protest that was staged outside the parliament went inside the house as well. Lok Sabha got adjourned till 2 p.m. Rajya Sabha got adjourned till 12 noon. And in both the houses, the Lok Sabha Speaker and Rajya Sabha Chairperson simultaneously requested these MPs that when the government has admitted the demand of Home Minister's statement in the House, why the opposition is now again and again creating trouble for the government to function this House smoothly, and the decorum was not maintained altogether. Both the Houses had to got adjourned.
0: Right, absolutely. Thank you, Aishwarya, for bringing all those details. The Lok Sabha Speaker a while ago emphasizing on constructive discussion on topics, reiterating that government is willing to speak on Delhi student protests as demanded by opposition. But despite that, more ruckus are being created. Let's move on. The Jharkhand student protest has entered day 18 after dramatic escalation during yesterday's march towards the assembly. Protesters faced lathi charge, tear gas and water cannons as police moved to disperse the crowd, with several protesters alleging injuries and excessive force. High drama was witnessed at Jharkhand Assembly late in the evening, with cops seen lathi charging protesters and chasing them away. Student leader Devendra Mato, who participated in the protest march, was hospitalized after his health deteriorated. He says he was pushed and harassed by police. The crackdown has also triggered strong reaction from protesters, with allegations that even women were not spared during the police action.
10: Jharkhand band call given by the BJP in support of the students, the agitating students, and in protest against the lathi charge which happened yesterday at the Ranchi Vidhan Sabha, when the students were lathi charged. And you can see this group of the BJP supporters actually out on the streets of Ranchi trying to enforce the band. The shops which were open, they are enforcing the band, getting this shops closed, shut down, and also they are trying to disrupt the vehicular traffic. It's a partial, the band is partial, I would say, because many of the establishments are still open, with the BJP workers in various areas of Ranchi and Jharkhand actually are out on the streets with the party flags, trying to enforce the band, raising anti-government slogans. and slogans in support of the agitating students out here. So this would be this kind of scene, this kind of visuals coming from across the state of Jharkhand, and now it has become political. Earlier we have seen the students were protesting and there was no political affiliation, there was no political alliance of these agitating students, but now BJP has openly jumped into the fray, and scenes like this actually coming from various districts of Jharkhand.
11: हम आज 17 दिन से सत्याग्रह में 9 दिन भूख हड़ताल में है, और अभी का समय में हमरा जैसे भूखे आदमी को भी पुलिस धक्का मुक्की कर दिया, हमको भी प्रताड़ित कर दिया, और अभी जबरदस्ती हमको एम्बुलेंस में डाल दिया। ये स्थिति है, ये विडंबना है, लेकिन मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगा, इस लड़ाई को मैं कंटिन्यू रखूंगा।
12: सरकार ये सोचती है कि इस पर लाठी चार्ज करके ये प्रोटेस्ट को कमजोर कर दें, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जितना भी उन्होंने लाठी चार्ज किया है, छात्र और आक्रोशित हो चुके हैं और छात्र का यहाँ और यहाँ भीड़ बढ़ता जा रहा है। छात्र ये सोच रही है कि इस बच्चे का जो मांग है, हम लोग का जो मांग है, इस मांग को न मांग करने का आवाज़ को दबाया जाए। ये आवाज़ अब दबने वाला नहीं है, यह आंदोलन अब जन आंदोलन का एक रूप ले रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल लाठी मारे थे कई युवा साथी आज हॉस्पिटलाइज हुए हैं, कितना का पैर टूटा है, कितना का माथा में चोट आया है, बट सरकार अपना हर नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रही है, बट यह छुपने की कोई नौबत नहीं है। हम लोग की सिर्फ तीन ही तो मांगी थी, आप मांग क्यों नहीं मान रहे हो?
0: Shifting focus now, a political war of words has erupted over the decision to sing Vande Mataram at the Red Fort on Independence Day. In a historic first, the national song will be sung when the Prime Minister arrives at the Red Fort on August 15, before the national flag is unfurled and Prime Minister delivers his address. The BJP has welcomed this move, calling Vande Mataram the song of India's independence and its martyrs, saying it will reaffirm the message of Desh Pratham. But the Samajwadi Party has objected, calling the move an attack on India's secular character. SP says only the first two stanzas were chosen for consensus and alleges that views are now being forcibly imposed.
13: 150वें वर्षगांठ के अवसर पर वंदे मातरम की थीम पर ही हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस होगा, उसी थीम पर पूरी झांकियां बनेंगी, और ये गीत फिर से एक बार देश में की जो हमारा देश प्रथम का जो नारा है उसको साबित करेगा और जन जन तक देशभक्ति की भावना पैदा करेगा, मातृभूमि की वंदना की भावना पैदा करेगा और देश में राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करेगा।
14: ये हमारे हिंदुस्तान का जो धर्म निरपेक्ष चरित्र है उस पर इनका हमला है। ये अपनी बात को जबरिया लाद रहे हैं। हिंदुस्तान के तमाम लोग जो विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं, उनकी अपनी पद्धतियां अलग हैं, इबादत के तरीके फर्क है, तमाम लोग ईश्वर को मानते हैं, तमाम लोग ईश्वर को नहीं मानते, और छोड़िए जो हिंदू जिन्हें लोग कहते हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास ईश्वर में या देवी देवता में नहीं है। तब कुल मिलाकर के जब हाउस व्यवस्थित नहीं था तब उन्होंने ये कानून पास करा लिया, और मैं समझता हूं हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है, ये अपनी बात लाद रहे।
15: This is the first time we are doing it with that sequence. The sequence is that he arrives on the rampart, then the national song is played and everybody keeps standing. Thereafter, he unfurls the flag and the national anthem is played.
0: Some breaking updates from Tamil Nadu. A huge political controversy has erupted after Tamil Nadu speaker joins anti-abortion rally in the state. JCD Prabhakar, Tamil Nadu Assembly Speaker, joined an anti-abortion rally and spoke against abortion. In fact, he said every unborn child has dignity. I see this event as an expression of it. All children are God's blessings. No one should possess an intention of thought against those blessings. The idea of pro-life is not only about a child, it is also about a mother who carries their child with love and empathy. Because of unplanned pregnancies, women may face financial issues, societal pressure, and even health issues. So that's a breaking update that we are getting at this point. A major political row there erupting in Tamil Nadu.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
2: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
2: War-struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
3: In the Kargil area.
2: North Ukraine.
4: In France. In Italy.
2: At Srinagar.
4: In Istanbul.
1: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
5: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
6: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
5: आप कहाँ से हैं?
6: हरियाणा। कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
5: डेढ़ महीने पे।
6: आपकी फैमिली है?
5: कौन?
6: बच्चे हैं? 3 साल। मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
5: बहुत।
6: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
5: श्रीनगर तक अलाउड।
6: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
5: See, the sacrifice is unbelievable, you know?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: वेट सेट आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: टाइम भी विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: ABVP had sat on dharna outside the old Vidhan Sabha, and for the last 1 hour, the police has tried to get them in the bus and somehow lead them away. Other workers of the Vidyarthi Parishad are now sitting here in front of the bus. So the bus is being stopped by members of the Vidyarthi Parishad, even as the detained members, there you see them, lying under the bus as the... one cop just kicked that man in order to remove him. Here you see, this is a guy who is now being dragged away by the police. And this really right now is the epicenter of the protest. One man seemingly has fainted here in front of the bus. And the police right now, in any which manner, is trying to get them to move away from in front of the bus. And that really is the epicenter of the face-off right now in Ranchi.
1: All right, so this is what happened today. Now, there is one question on what happens to the protesters and the protests after day 18. The big event was, of course, the Assembly Gherao program of the protesters. Now, that is done. The demands are still stuck. So what happens from here on after all these protesters? Some of them were beaten up as well. Some policemen also sustained injuries. But the question now is the government not feeling enough pressure despite Rahul Gandhi, who is part of this entire government, his party is part of the government. Rahul Gandhi has spoken multiple times about it. He spoke to the protesters on phone. He has given a soundbite yesterday as well. A video was released where he condemned the attack. But why is Rahul Gandhi speaking about it and not being there? Let me try and explain this conundrum to you, ladies and gentlemen. Chhatro Ki Goonj event that Rahul Gandhi has hosted in three states. So there has to be some continuity. He cannot be seen in isolation where he goes to opposition states for Chhatro Ki Goonj. And when it comes to Jharkhand, he doesn't say anything. So that's why Rahul Gandhi has also, of course, spoken about this. The fight is also for 29% Gen Z votes in 2029. Rahul Gandhi knows that there is an important vote bank in the young people. He wants to be the champion of the students. He has, in fact, done that. He has been speaking about this. And may I add, he has been speaking about this even before the Jantar Mantar protest. The reason why he continues to, in fact, speak about and condemn what is happening in Jharkhand is also some sort of political messaging that he wants to send out because of what has happened between the Congress and the JMM after the Rajya Sabha poll mismanagement in the state of Jharkhand. So the messaging from Rahul Gandhi is clear. But then why is it that Rahul Gandhi, despite speaking to the protesters, despite speaking to the these students, and giving them their support, why is he not going to Jharkhand? The reason for that, ladies and gentlemen, is, of course, Rahul Gandhi does not want to embarrass the government that he is part of. Remember, the Congress party is the junior partner in the state of Jharkhand. Four ministers in the government of Hemant Soren are from the Congress party. And while Rahul Gandhi is speaking about it, he doesn't want to be in a head-on confrontation with the government of India bloc, where Hemant Soren, he doesn't want to look like attacking the government of Hemant Soren, where he is also part of this entire protest as well. Let me very quickly now go across at this moment and introduce some guests. Those who are joining us, and all of these guests are the people, those who are on the ground, have been protesting in Jharkhand, in Ranchi, just to try and understand what's the way forward. Imam Safi is a student leader who is joining us from Jharkhand. We also have Sheikh Mohsin. He's a student leader also from Jharkhand at this moment. We are also being joined by Aarti Pandey, JPSC and JSSC student. She's been speaking very vehemently against what has been happening in Jharkhand. Kunal Pratap Singh, you saw him yesterday on a lot of media channels. He's one of the teacher and organizers who has been raising the issue of the paper leaks in Jharkhand. Bahut bahut shukriya. Thank you so much to all of you for joining us on the broadcast. Kunal ji, sabse pehle main aapse hi shuru karna chahta hu. Kal aap protest mein the. Kal humne dekha ki kis tarike se wahi galtiyan dohrai gayi जो कई लोग कह रहे हैं जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुई थी, छात्रों को इतने दिन बैठाए रखा गया, जब उनकी बात नहीं मानी तो उसके बाद उन्होंने अपना घेराव का प्रोग्राम आगे चलाया, तो उनकी पिटाई भी कल हमने देखा किस तरीके से हुई। आपको लगता है कि सरकार ने कोई भी लेसन नहीं सीखा है? जो दिल्ली में हुआ वही अब रांची में हो रहा है।
2: सबसे पहले सभी दर्शकों को, एनडीटीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत जोहार। और सर मेरी आवाज आ रही है?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है।
2: हाँ, तो कल का जो सर प्रोटेस्ट था हम लोगों का, वो झारखंड के इतिहास में एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट था। और जो सरकार के तरफ से जो लाठीचार्ज हुआ वो एक दुर्भाग्यपूर्ण, इसको व्यवहार कह सकते हैं, हम लोग बिल्कुल ऐसा उम्मीद नहीं किए थे। हम लोग चूंकि कल स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है माननीय हेमंत सोरेन जी, हम लोग ये कल उनका बर्थडे भी था, तो हम लोग ये ऐसा हम लोग को लग रहा था कि शायद कुछ अच्छा कल हम लोग को रिजल्ट मिले, कुछ एक अच्छा सरप्राइज मिले, लेकिन सरप्राइज के रूप में क्या मिला? लाठीचार्ज, जो कि बहुत निंदनीय अपराध है। 16 दिन से जो हम लोग बैठे हुए थे धरना स्थल पे, 16 दिन में हमने कई एक बार रैलियां निकाली, 10,000 की संख्या में निकाली, लेकिन एक बार भी ना कोई पोस्टर फटे, ना कोई एक्शनी हुई। आपने देखा पूरे देश में हमारे प्रोटेस्ट की जो है एक मतलब एक अच्छा वो गया कि नहीं, झारखंड के छात्र बहुत अनुशासित है। वाकई हम लोग झारखंड के जो छात्र है बहुत अनुशासित, लेकिन कल जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। एक तो झारखंड में जो भ्रष्टाचार का लेवल है, मैंने आपको बताया, सभी लोग जानते हैं जिस तरह से यहाँ अंदर अंदर मार्कशीट को भरा जाता है। जैसे सीजीएल का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें सीआईडी ने पूरे जांच के दायरे को ही बदल दिया, पेपर्स में कुछ और है, हाईकोर्ट में कुछ और सबमिट किया गया, तो झारखंड में एक अलग एसओपी लगल, एक अलग लेवल का भ्रष्टाचार चल रहा है और हर परीक्षा में लगभग ये चला आ रहा है। झारखंड के तरफ से जब हम लोग झारखंड सरकार से हम लोग मीटिंग किए, तो ये मैसेज, एक नैरेटिव सेट किया गया कुछ मीडिया संस्थानों के द्वारा कि हमारे 98% मांगे मांग ली गई, जबकि ऐसा कोई बात नहीं था।
1: रिफॉर्म, एक बार जरा मुझे पहले आप बता दीजिए कि सरकार ने अभी तक क्या मांग मानी है और क्या मांग नहीं मानी है, एक बार क्लियर कर देते हैं इसको।
2: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रिफॉर्म्स पे सारी बातें हम लोगों की नहीं सुनी गई, लेकिन सरकार की तरफ से ये बोला गया कि रिफॉर्म्स का हम लोग जो है बात अलग से हम लोग मान लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार की, जो पेपर स्लीप हो रहे थे, जो एसएस वगैरह का जो कार्यप्रणाली था, इनका कहना है कि हम सिर्फ 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द करेंगे। TDPL का जो परीक्षा है, जो TDPL एजेंसी, जिसमें अभय तिवारी नाम के एक शख्स का वर्णन आया कि अभय तिवारी ने सारी परीक्षाओं के पास की, उनपे इनका यह कहना है कि हम उसमें जांच करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। अब देखिए इसमें जांच करने का सवाल ही क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट के कई गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई परीक्षा करा रहा है और परीक्षा कराने वाली एजेंसी ही दूषित है, तो पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द कर देनी चाहिए। तो जब दो पेपर्स के, जो 14वें जेपीएससी के और बैकलॉग 2015 जेपीएससी के, जब उनके मार्कशीट आए, तो बाकी तीन परीक्षाओं में क्या गारंटी है कि वो एग्जाम सही हुआ होगा?
1: ठीक है।
2: और कल आपने देखा, कल एक रिसेंट एक्टिविटी,
1: मैं एक मिनट में आपके पास वापस आता हूं, एक बार जरा बाकी सबसे भी उनकी बात सुन लें, फिर मैं दोबारा आपके पास लौट के वापस आता हूं। आरती, मैं आपसे समझना चाहता हूं, कल जो हुआ उसके बाद क्या आपको उम्मीद है कि सरकार संवेदनशील है और सही मायने में कोशिश कर रही है जो मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं वो मुद्दे आगे बढ़ पाए, उसका समाधान हो पाए?
3: देखिए, आज मुख्यमंत्री जी लाइव में आके बोले सांच को आज नहीं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो अब तो सीबीआई दे ही देंगे, क्योंकि आज उनके बातों से लग रहा था कि सांच को आज नहीं, तो जब अपना जो बात बोले हैं उस पे वो अड़े रहेंगे। और जहां तक बात है, ये जो कल प्रोटेस्ट हुआ और जो कल लाठी चार्ज हुआ, इसका तो बहुत ही सच में दुर्भाग्यपूर्ण बात है हम छात्रों के लिए, क्योंकि आज 15 दिन से जो हम लोग आपका जितना भी हम लोग जो प्रोग्राम भी किए, उसमें कभी भी कहीं भी हम लोग असभ्य भाषा का इस्तेमाल कुछ भी हम लोग ऐसा कुछ नहीं किए, लेकिन फिर भी हम लोग को लाठी चार्ज और खासकर लड़कियों को मारपीट किया गया है, ये तो सच में दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोग झारखंड के वासी को लेके।
1: इमाम, मैं आपसे जानना चाहता हूं,
3: और मेरा कहना
1: जी,
3: ना
1: जी,
3: कि
1: बोलिए,
3: एक मिनट, मेरा कहना है ना कि जैसे उन लोगों का, जैसे इलेक्शन उन लोगों का फेयर होना चाहिए, उन लोगों का डिमांड होता है, तो हम लोग का भी सिलेक्शन फेयर होना चाहिए ना, ये तो हम लोग का भी डिमांड रख सकते हैं ना।
1: बिल्कुल सही, ऑपोजिशन
3: तो हमारी मांगे कहां पर ना जाए,
1: सवाल उठाता रहा है, तो क्या छात्रों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने सिलेक्शन प्रोसेस पे सवाल उठाएं? आपको अगर वहां पर आपको लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही और इलेक्शन प्रोसेस की जांच नहीं हो रही, तो आपको तो बल्कि आगे बढ़ के और बेहतर जांच करानी चाहिए, अगर छात्रों की इस तरह की कोई बात है। इमाम, अब आगे की रणनीति क्या होगी? लग रहा था कि भाई 15-16 दिनों से छात्र बैठे हुए हैं, भूखे भी हैं, कुछ लोग अनशन पर भी बैठे हुए थे, जब मैं वहां पर आया बारिश में, मैंने देखा देखा किस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे, अभी तक जब बात नहीं सुनी गई है तो आगे की अब क्या स्ट्रैटेजी होगी?
4: जी सर, जो भी स्ट्रैटेजी होगी हम लोग सभी स्टूडेंट मिल करके और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी हैं और तमाम झारखंड के जितने संगठन हैं और तमाम बुद्धिजीवी लोगों से मिल करके हम लोग बैठक लगातार कर रहे हैं। अभी हम लोग कल 2 बजे प्रेस क्लब में सूर्य सिंह बेसरा जो झारखंड निर्माता हैं वो भी प्रेस को संबोधित करेंगे और वो बड़ा निर्णय हम लोग बहुत जल्द लेने वाले हैं सर। और जैसे कि अभी बताया गया स्टूडेंट की तरफ से वो भी काफी उसका समर्थन है और उसमें हम डेलीगेट में भी हम शामिल थे तो देखने को हमको मिला कि ये सरकार जिद में और ईगो में आ गई है, इसे ईगो छोड़ना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट जो होता है ये उसके वो पेरेंट्स होते हैं, सरकार में रहने वाले नुमाइंदा जो होते हैं, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, जनता पर बेरहमी से विशेष करके उनके बच्चों पर स्टूडेंट पर हम लोग पूरा 15 दिन से ज्यादा बापू वाटिका में अभी हम लोग सत्याग्रह कर रहे थे, ये विरोध जो हुआ कर रहे थे, कल लाठी चार्ज किया गया सर और जिसका मैं
1: अब तो 18 दिन हो गए। पर इमाम मुझे ये बताइए कि कल जो जिस तरीके का जो घटना हुई उसके बाद से छात्रों का रिजॉल्व क्या और मजबूत हो गया है, चाहे कितना भी समय लगे यहाँ पर अपनी बात मनवा के ही अब जाएंगे?
4: दिल्ली की जंतर मंतर की तरह हो गया है सर, वहां पर जिस तरह से 20 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा लाठियां भांजी गई थी तो ठीक इसी तरह से यहाँ वहां तो कुछ सामाजिक तत्व द्वारा माहौल भी गड़बड़ हुआ था लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था सर। हम लोग लास्ट में 4 बजे तक गेट पे पहुंचे हैं और आराम से बैठे हुए थे, हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से सब बैठे स्टूडेंट बैठे हुए थे करीब 500,000 के आसपास और खेत से पगडंडी से होते हुए हम लोग पहुंचे हुए थे विधानसभा गेट नंबर 1 और 2 में और बैठे हुए थे, बारिश की बौछार हो रही थी और उससे पहले तो सरकार ने बहुत ही निंदनीय काम किया है सर, पानी का जो है वाटर कैनन का यूज किया गया, हम लोग पर गोलियां भांजी गई, वो आंसू गैस का गोले दिए गए, पूरा खतरनाक सिचुएशन था सर। हमारा बैरिकेडिंग हम लोग 6-6 बैरिकेडिंग को बहुत आराम से खोल कर हम लोग अंदर गए, वहां पर कांटे जो लगाया गया था जैसे कि हम लोग झारखंड के नहीं है, हम लगता है कि हम लोग स्टूडेंट आतंकवादी हैं, इस तरह कांटेदार।
1: एक मिनट का मुझे वक्त दीजिए शेख मोहसिन, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जिस लेकिन कल ये भी बात सामने आई कि कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे, उसके कुछ विजुअल्स भी आए, बार बार ये बात कही गई कि पुलिस ने बहुत जो रिएक्शन था वो इस वजह से था क्योंकि पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की गई, क्या ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने इस तरीके की हरकतें करी वहां पे?
4: जी सर, हम लोगों ने उन लोग को
1: शेख मोहसिन इमान रुक जाइए एक मिनट,
5: सभी एनडीटीवी के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार बोलना चाहते हैं सर, और बताना चाहते हैं सर हम लोग कि जो कल हुआ वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है, हम लोग के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, हम लोग बहुत मुश्किल से बचे, बहुत छात्रों को चोट लगी है ना, और सबसे बड़ा बात आपको ये बताना चाहते हैं सर कि ये हम लोग का फर्स्ट ये आंदोलन नहीं है, फर्स्ट जो हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं या फर्स्ट नहीं है सर, JSSC या JPSC जो भी एग्जाम लिया है तक सर, हर एग्जाम में इन्होंने घूस लेकर लोगों को नौकरी दिया है डायरेक्ट। और ये भी बताना चाहते हैं सर, ऐसा नहीं है कि ये पेपर लीक होता है, पेपर लीक से भी बढ़ के ये बात समझिए कि लोगों को JSSC JPSC में बैठे हुए लोग और ये ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं एग्जाम लेने के लिए जो सब जगह चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, और यहीं तक नहीं समझिए सर कि ये सिर्फ वैसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो सब जगह भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाते हैं, ये एग्जाम सेंटर में भी चोरी करवाते हैं, वही एजेंसी जो एग्जाम लेती है वो एग्जाम सेंटर में भी चोरी करवाती है, मतलब जो एजेंसी है JSSC JPSC झारखंड में एग्जाम लेती है दो ही सेंटर सर, इन लोग में बैठे हुए लोग जैसे आप देख रहे होंगे JPSC का अध्यक्ष अभी जेल गए
1: जी,
5: उसी तरह से JSSC में बैठे हुए लोग भी जो कि काफी CGL का एग्जाम ली, PGT 2023 का एग्जाम ली, ऐसे काफी रेपुटेड एग्जाम लेता है और इन लोग जो है डायरेक्ट आप किसी भी झारखंड के छात्र को पूछेंगे कि आप एग्जाम दिए हैं, उसके पास कॉल आया है, तो इसके दलाल घूमते रहते हैं सर, और आप नहीं, पैसे
1: मैं जब वहां पर था रांची में, तो मैं सबसे बड़ी बात कुणाल मैं आपको भी इसमें लाना चाहता हूं, छात्रों से मैं पूछ रहा था कि बार बार एग्जाम क्यों देते हैं आप जब आपको पता है कि पेपर लीक हो जाता है। तो कोई मुझे बता रहा था 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, 26 साल की उम्र में शुरू करा था, 36 साल की उम्र हो गई है, वो बोल इतना मान लिया है, कहते हैं कि हमें पता है कि 95% सिलेक्शन धोखाधड़ी से हो रहे हैं, पर वो 5% भी उम्मीद रहती है कि अगर 5% भी ठीक हो रहे होंगे तो उसके चक्कर में

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: प्योर शाही पनीर मसाला।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
2: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज़।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तम्बी कैसे?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तंबी कैसे? टाइगर जैसे।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.
4: जानते हैं मैं Elite Matrimony क्यों recommend करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service. Modo Elite.
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
6: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
7: बैठ सकता हूँ आपके साथ? खाइए ना।
6: आप कहाँ से हैं?
7: हरियाणा। कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
6: डेढ़ महीने पे।
7: आपकी फैमिली है?
6: और
7: बच्चे हैं?
6: 3 साल।
7: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
6: बहुत।
7: टाइम भी विजिट करने अलाउड है?
6: श्रीनगर तक अलाउड।
7: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
6: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
3: Just few inches away is POK.
2: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा।
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद पान मसाला।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
4: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
5: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
6: हरियाणा।
5: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
6: डेढ़ महीने पे।
5: आपकी फैमिली है?
6: और
5: बच्चे हैं?
6: 3 साल।
5: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
6: बहुत।
5: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
6: श्रीनगर तक अलाउड।
5: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
4: See, the sacrifice is unbelievable, you know?

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
3: Just few inches away is POK.
2: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन ना बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब ना बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तुम भी कैसे? टाइगर जैसे।

0: मुख्यमंत्री नहीं है, राहुल गांधी जी वहाँ होम मिनिस्टर नहीं है, दिल्ली में क्या हुआ है उसका होम मिनिस्टर अमित शाह जिम्मेदार है।
1: All right, and joining us today on the show, we have Sanju Verma, national spokesperson of the BJP. Tavleen Singh, author, joins us along with senior journalist Ashutosh. And my first question is to Irfan Ansari, cabinet minister in the Jharkhand government. Irfan Ansari saab, sabse pehle aapse sawal yahi puchenge ki aapne aaj saaf saaf bol diya ki hum pitte ja rahe the, yani ki police pitti ja rahi thi, lekin lathi charge nahi hua, bal prayog nahi hua. जो वीडियो आ रहे हैं वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं, तो लाठीचार्ज हुआ झारखंड में या नहीं हुआ?
2: मैम मेरी बात सुनिए ना मैडम, देखिए मैं सच्चाई में बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर खुद हूँ, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ। अगर लाठी, एक मिनट सुनिए, अगर लाठी चार्ज हुआ मैडम तो कितने लोग घायल हुए इसकी पुष्टि है क्या आपके पास? केवल दो बच्चे आए हमारे पास, वो भी उनको भूख लगा था, भूख स्ट्राइक पे थे, किसी को चोट नहीं लगी मैम। चोट किसको लगी? पुलिस को लगी। पुलिस अगर नहीं चाहती मैम, अगर मान लीजिए पुलिस अगर चाहती तो बच्चे क्रॉस नहीं कर सकते, लाइन लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकते। आप बताइए, विधानसभा के अंदर तक बच्चे आ गए, आप हमारी सहनशीलता का परिचय ले रहे हैं? केवल ड्यूटी, राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, कोई अटैक नहीं करेगा। और जब रात में जब वहाँ पर भाजपा के लोग आ गए, युवा मोर्चा के लोग आ गए, वो लोग ड्रामा करने लगे, वो लोग हिंसा करने लगे, वो लोग तोड़फोड़ करने लगे, इसके बचाव में भी फिर भी पुलिस ने शांतिपूर्वक उनको भगाया वहाँ से। उसके बाद आप लोग क्या क्या मैसेज दिखा रहे हैं कि लाठीचार्ज, ये बंदूक चार्ज नहीं हुआ है, ये AK-47 चार्ज नहीं हुआ, एक भी गोली नहीं चली है वहाँ पर। हम लोगों ने पीसफुली हम लोगों ने वार्ता किया। और मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड मैडम, देखिए जो बच्चे आंदोलनकारी हैं, हम लोग वार्ता कर रहे हैं, 95% हम लोगों ने मांग उनकी मान ली है, कुछ आगे पीछे वार्ता चल रही है, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात जो है, भाजपा मजा ले रही है। हुआ ये भाजपा, आपको जब युवा नहीं चाह रहा है, आपको जब झारखंड की जनता नहीं चाह रही है, तो आप क्यों बीच में आ रहे हो भाई? आप हाँ। नकली हितैषी क्यों बन रहे हो? आप सिंपैथी लेने की बात क्यों कर रहे हो?
1: ठीक है, आज देखिए, तो आप कह रहे हैं कि जिनको भी लाठी लगी है वो लोग नहीं, युवा मोर्चा के थे, वो भाजपा के थे, किसी भी युवा को लाठी नहीं लगी है। संजू वर्मा, रिस्पॉन्ड टू दैट। नहीं,
2: इसी लोगों ने भाजपा के बंद का समर्थन नहीं किया।
1: हैज बीन बीटन संजू वर्मा, इट्स ओनली बीजेपी फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स।
3: यू नो पद्मजा, आई कंप्लीटली डिबंक द ब्लेटेंट लाइज दैट आर बीइंग स्पोकन विद ब्रेजन इंप्यूनिटी ऑन योर शो। Irfan Ansari, who's the, you know, family minister, medical education and health minister of Jharkhand, and is from the Congress party. The Congress, incidentally, has 4 members in the 11 member cabinet of Jharkhand. Sharam nahi aati hai yahan par lathi charge jo police ne kiya, bolte ho lathi charge hui hai,
2: aapko sharam aayegi, humko kyun bol rahe ho?
3: Jab jantar
2: kya lathi, kitne log ghaail ho, ye banduk goli chali hai kya? Hum maar kha rahe hain, kya ulta pulta bakwas kar rahe hain aap? हम मार खा रहे हैं, हमारा सर फूट रहा है, हम पीछे फिर भी पीछे, ये तो कॉमन सेंस की बात है।
3: It is not my job to moderate the debate.
1: Mr. Ansari, I will give you time to respond. Please, आप 5 मिनट दीजिए उनको, 2 मिनट अपना ओपनिंग स्टेटमेंट करने दीजिए, मैं आपके पास वापस आऊंगी। संजू वर्मा, फिनिश योर पॉइंट।
2: क्या बोला बोलिए मैम।
3: एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिस्टर अंसारी, खबरदार, मैंने यहाँ पर कोई बकवास नहीं किया। डोंट यूज दैट काइंड ऑफ फाउल लैंग्वेज ऑन दिस शो। आप मिनिस्टर हैं तो थोड़ी गरिमा दिखाइए, यहाँ बैठकर ये बकवास कर रही है, ये सब क्या तरीका है बात करने का? आपको थोड़ी शर्म नहीं आती है? नेशनल टीवी पर कैसे बातचीत होती है? लेट मी नाउ से दिस, लाठी चार्ज, डिड इट हैपन, यस और नो? द आंसर इज,
2: वो हमको तमीज नहीं सिखाएगी, मैं बता दे रहा हूं,
3: यस और नो? द आंसर इज यस।
1: Okay, can I please request everyone to not make this personal and one person at a time? Yes.
3: Yes. The limited point is this. To try and...
2: आत्मा के बारे में बोल रहा हूँ तो बुरा लग रहा है इनको.
3: You know, look at this man. He's... क्या हो गया आपको? थोड़ा सब्र दिखाइए. मेरी बात खत्म हो जाए, बाद में आप बताइए. आपको जो बोलना है, बोलिए. थोड़ा चुप रहिए, शांत रहिए 2 मिनट. The limited point is this. I repeat, lathi charge happened, yes or no? Yes. Were women stripped? Yes or no? Yes. There are authentic videos on social media where young girls are saying how they were physically manhandled by male police officers. Women police officers were not there in adequate numbers. The third point, when a lathi charge happens at Jantar Mantar, the Darbari ecosystem cries foul. But when a lathi charge happens at Ranchi in Jharkhand, we are given various lame excuses to justify the police brutality. Why? What should be sauce for the goose should be sauce for the gander too. You should apply laws with the same kind of restraint.

0: झारखंड. सो यस आशुतोष, कोई कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड अब्यूजिव स्लोगन्स छात्रों ने रांची में नहीं लगाए, बट छात्रों ने जंतर मंतर में चाहे स्लोगन्स नहीं लगाए हो, पर प्रोफेशनल आंदोलन जीवी ने वहां पर आकर जंतर मंतर में सरकार को कोसा, प्राइम मिनिस्टर मोदी को अब्यूज किया, उनकी माता जी जो अभी दुनिया में नहीं है उनको कोसा, अमित शाह मर गया हाय हाय, ऐसी स्लोगनियरी का क्या आप खंडन करते हैं या क्या आप इसे एंडोर्स करते हैं?
1: मुझे
2: तो शर्म नहीं आती है, लेकिन मुझे लगता है इस देश के गृह मंत्री को, इस देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि 20 दिन से आप पार्लियामेंट क्यों नहीं आ रहे हैं. आर यू सो गिल्ट रिडन? आर यू एम्बैरस्ड? व्हाई डू नॉट फेस द पार्लियामेंट? द होल कंट्री इज टॉकिंग अबाउट दिस कॉकरोच मूवमेंट, हाउ दे वर बीटन अप, एंड द बीजेपी लीडर्स आर ओपनली ब्रेजनली सेइंग नो पैलेट गन वॉज यूज. जस्ट कैन यू इमेजिन समथिंग, द लाई ऑफ दिस लेवल.
1: Just like the Congress is saying that we did not do an unprovoked lathi charge, despite the students here saying we were just sitting by the gate, we were picked up, we were dragged on the streets and we were beaten.
2: Padmaja, let me
1: complete. Yes, go on.
2: Let me complete. You know what was the, and what was the narrative created in the media? पुलिस वाले भी पिटे हैं बुरी तरीके से, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? आज झारखंड में ये नैरेटिव नहीं है. झारखंड में अब किसी की पुलिस से कोई सिंपैथी नहीं है, क्योंकि
1: है ना वही है, एसएसपी वही कह रहे हैं, इरफान अंसारी वही तो कह रहे हैं कि भाई हमें पीटा गया पर हम चुपचाप झेलते रहे. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इरफान अंसारी इज सेइंग.
2: पद्मजा लेट मी कंप्लीट. आई वॉच ऑल द टीवी, आई वॉच ऑल दोस टीवी चैनल्स, एंड एवरी टीवी चैनल वॉज क्रिएटिंग अ नैरेटिव दैट हाउ दीज स्टूडेंट्स एट जंतर मंतर वर अब्यूसिव, वायलेंट, एंटी सोशल, ऑल दिस. And they were, their sympathies were with the police. Today,
1: but sir, why are you watching other TV channels? Mr. Ansari is sitting with you on the debate right now. He started the debate by saying कि लोग हमें उकसा रहे थे और पुलिस को वो पीट रहे थे पर हम पिटते रहे चुपचाप. That is literally how he started. That's not even a narrative. That is literally his argument at the beginning.
3: देखिए मैम,
2: I'm talking about the false narrative created about the Jantar Mantar. And now the similar narrative is being created in Jharkhand. Forget about it. My the simple question is, the event which has shaken the political establishment of the country, why the Home Minister Amit Shah, why the Prime Minister Narendra Modi
1: are you Ansari sahab
2: to the parliament and facing the parliament? That's a fundamental question.
1: Okay, Irfan Ansari sahab, aap hi bata dijiye, kyunki agar jantar mantar pe police walon ka pitna false narrative hai, so then why should your argument, which is pretty much the same, be taken at face value? आप भी तो ये कह रहे हैं हमें उकसाया गया पर हम पिटते रहे, इसको भी फॉल्स नैरेटिव कहना चाहिए?
3: मैम सबसे पहली बात ये है, मैम देखिए देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को पार्लियामेंट में देखना चाहती है, सुनना चाहती है. अमित शाह को देश की जनता सुनना चाहती है पार्लियामेंट में, वो कहाँ है? जिस प्रकार मैं बीजेपी के स्पोक्समैन की बातें सुन रहा था, हम लोग ये यहाँ किसी ने कोई गाली नहीं दिया. अगर किसी ने देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया तो इरफान अंसारी कंडम कर रहा है, अगर किसी ने होम मिनिस्टर को गाली दिया है तो इरफान अंसारी कंडम कर रहा है. लेकिन अगर आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आएंगे मैडम, तो मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस मुद्दे को बनाया जा रहा है, सेंट्रल में पेश किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है. हमारे बच्चे हैं, धरना दे रहे हैं, हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं. 95% मामला सॉर्ट आउट हो चुका है और 5% आगे पीछे. हमने कहा कि तुम भी आगे बढ़ो, हम भी पीछे हटेंगे, तुम भी पीछे हटो, हम आगे
1: बढ़ेंगे. बनाया जा रहा है,
3: मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा.
1: ही इज आल्सो सेइंग बनाया जा रहा है, ही इज प्रीटी मच अगेन कॉलिंग इट अ फॉल्स नैरेटिव. What you were condemning in Jantar Mantar is being argued in Jharkhand as well, that this is a false narrative that is being created.
3: नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ यहाँ तो पुलिस हमारी मार खाई, हम बच्चों को सपोर्ट किए, उस आंदोलन में भाजपा घुस गई, उनके गुंडे घुस गए, वो चाह रहे थे कि आंदोलन को बर्बाद कर दें, तबाह कर दें और झारखंड की छवि और ख़राब करें, पुलिस को इतना उग्र कर दो कि पुलिस गोली चलाए. लेकिन फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ, हम थैंक्स देंगे राहुल गांधी जी को, थैंक्स
1: देंगे आशुतोष
3: को कि उनके कारण ही
1: यू वर आर्ग्यूइंग
3: पर जो उग्रवादी लोग थे, जो भाजपा के लोग, उस पर हम लोग गोलियां नहीं चलाई.
1: यू आर सेइंग दैट जंतर मंतर,
3: हमने देखा है अपने आंखों से, हम देखे, हम यहीं पे थे.
1: डोंट यू थिंक अ नैरेटिव इज बीइंग क्रिएटेड इन झारखंड एज़ वेल? where you are blaming the BJP, where you are saying that the police

0: statement and gone. He's just disappearing, absconding. And even the chairperson of the Rajya Sabha, CP Radhakrishnan has told Parliamentary Affairs Minister, please convey to Mr. Amit Shah the sentiments of the opposition.
1: Sanju Verma, please respond. The onus is on the government and the Home Minister to address the issues of students. Make the start, argues Ashutosh. Respond.
2: Now, let me tell you one thing. You know, Tavleen Singh is not here, but let me say that her generic statement saying all politicians lie, no. Prime Minister Modi reached out to Gen Z. We sent 47 members of the NTA. We said that the NEET exam will be held in CBT format from next year. We came out with the Public Examinations Amendment Anti-Cheating Act of 2026. So if Tavleen Singh says that all politicians are alike, she's certainly not done her homework before coming on your show. But I will tell you what, Padmaja. I can give three instances very quickly. Please bear with me. ACP Punjabi Bag, Mr. Jay Prakash came home. Unki bitiya ne press conference mein kaha he was soaked in blood. Rahul Gandhi ne ek par nahi kaha ki police karmchari ko itni buri tarah se kyun pita gaya. ACP Connaught Place, Vivek Bhagat, brutally thrashed by a bloodthirsty crowd. Ek bar Priyanka Vadra, Rahul Gandhi, darbariyon ke muh se chu nahi nikli. Phir senior policeman Hemendra Rathi, unki bitiya bhi press conference mein thi. Unhone kaha, jab mere pita ji ghar aaye, to unki puri uniform khoon se latpat thi. Rahul Gandhi se jab poocha gaya, what did he say to a reporter 48 hours back? Arre, aap BJP ke patrakar ho kya? आज प्रियंका वड्रा को पूछा गया आप रांची क्यों नहीं जा रही, राहुल गांधी रांची क्यों नहीं जा रहे, तो प्रियंका वड्रा इसे अरे हम चले जाएंगे ना, आप अपनी चिंता करो. लुक एट दी कैलस बिहेवियर ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड अ पेड दरबारी लाइक आशुतोष 6 ईयर एंड हैज नो गट्स टू क्वेश्चन राहुल गांधी. बस प्रधानमंत्री अमित शाह के बारे में अनाप शनाप बोलना है, दैट इज ऑल यू डू. Who is
1: okay, I am going to let Mr. Ansari respond to
0: you. I
1: want to just draw that line on this show. Please don't use words like paid darbari. This is not becoming of anyone. And it is not serving any purpose. It is just creating unpleasantness. You're all my guests. And I think it is responsible. It is my responsibility to ensure that everyone is treated in a civil and respectful manner. I am going to make this last request. Please do not use these words for each other. It is not becoming of either one of you or of this show or of me as its host. Final request. Mr. Ansari, please respond. यहाँ पर नारे लग रहे थे कल लाठी चार्ज होने के बाद राहुल गांधी रांची आइए, राहुल गांधी रांची आइए, और ये बीजेपी व्हाट अबाउटरी नहीं कर रही है, यहाँ पर बच्चे भी कह रहे हैं राहुल गांधी रांची आइए.
3: मैम एक मिनट, मैम मेरी बात देख सुनिए मैडम, बीजेपी को राहुल गांधी से इतना डर क्यों है? क्या राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज़ हैं, जनता की आवाज़ हैं? हर चीज़ में ये लोग राहुल गांधी को टारगेट कर रहा है क्यों? यहाँ राहुल जी ने कहा कि पीसफुली आंदोलन करो, हम लोग मार खाए, पुलिस हमारी मार खाई, फिर भी एक जरा भी हम लोगों ने एक्शन नहीं लिया. हम लोग रिस्पेक्ट करते राहुल जी को, क्योंकि एवरी स्टूडेंट राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, सारे लोग राहुल जी को याद करते हैं. यहाँ ऐसी कोई बात, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम की सरकार है.
1: हम कैसे ऐसे डिनाइल में रह सकते हैं?
3: आपके माध्यम से
1: हमारे कैमरे पे लड़कियों ने बोला है कि मेल पुलिस ने उनको घसीट घसीट के सड़क पर उनको मारा, उनको लाठियों से मारा, और आपको विश्वास नहीं है?
3: मैं झारखंड में हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है.
1: हम आपको सुनाएंगे
3: भाजपा के द्वारा.
1: मैं भी झारखंड में हूँ अभी सर.
3: ये भाजपा,
1: मैं आज एक अस्पताल में लड़के से लेके आई हूं,
3: हमारी है,
1: मुझे दिखाया, उसके हाथ पे लाठी लगी है, उसकी पीठ पे, यहाँ नेक में लाठी लगी है.
3: हमारे बच्चे हैं, किसी बच्चे पे गोलियां नहीं चलाया गया है. हम लोग पीसफुली जो लोग युवा आंदोलन कर रहे थे, हम लोग उनका समर्थन किए हैं. और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एकदम एश्योर्ड रहिए, आंदोलन जल्द खत्म होगा. सरकार बातें मान रही है, हमारे बच्चे भी तैयार हो गए हैं. लेकिन ये भाजपा के कारण ये लोग उसका रहे थे, तुम लोग पीछे, तुम लोग मत हटो, तुम लोग अपने बात पे कायम रहो. इसी का परिणाम है ये सब हो रहा है. सच्चाई यही है, आप जो डिबेट करा रहे हैं वो दिल्ली के लोग हैं, लेकिन झारखंड
1: की अंसारी साहब, सच्चाई क्या है? ना तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं,
3: ना
1: यहाँ पे पैनल पे बैठे हुए कोई डिसाइड कर
3: सकते हैं.
1: अल्टीमेट पर्सन हु विल डिसाइड व्हाट इज द ट्रूथ एंड व्हाट इज राइट इज गोइंग टू बी दीज वेरी पीपल फ्रॉम झारखंड टू जंतर मंतर. द जेन जी दैट यू आर स्पेंडिंग स्लीपलेस नाइट्स ओवर, दे आर वॉचिंग यू, दे आर लिसनिंग टू यू, एंड दे विल जज.

0: you ultimately when it comes to pressing that button on the EVM. They will be your final judge. I will leave it at that. Thanks very much, all gentlemen, Tavleen Singh and Sanju Verma, for joining me. And since you've heard over the last 35, 40 minutes, people saying again and again that there is a false equivalence, nothing happened in Ranchi, I will get to you actual voices. You may have seen those viral videos of young women enraged, screaming about what was done to them. Now listen to them on camera narrate what happened on the night of Monday in Jharkhand. The BJP and Congress are eyeball to eyeball now over the lathi charge that has taken place in Jharkhand. But what about the people who were caught in the crossfire? Those who actually took the lathis in the middle of the night, they are still counting their injuries. Several of them in hospital and several still here seething with anger. आप कह रहे हैं यहाँ पर झारखंड सरकार हमें लाठी नहीं गोली मारो, क्यों?
1: मैम क्योंकि देखिए ये सरकार हम लोगों को लाठी मारेगी, हम लोग फिर से आ जाएंगे, फिर से अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो हम सरकार से कहते हैं आप इतनी बर्बरता दिखा सकते हैं तो एक बर्बरता की सारी हदें पार करके गोली मार दीजिए ताकि ना हम लोग जिंदा रहेंगे ना अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। जिंदा रहेंगे तो हम लोग आएंगे, अपने भविष्य के लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम लोग उस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम अपने भविष्य को अंधेरे में नहीं धकेल सकते हैं।
0: मंडे को हुआ क्या रात?
1: कल हम लोगों के साथ ये हुआ, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पुराना विधानसभा से मार्च करते हुए जा रहे थे, चार पांच बैरिकेडिंग लगी थी, लास्ट बैरिकेडिंग में गए, वहाँ पे भी लाठी चार्ज किया गया, आंसू के गोले छोड़े गए, पानी का वो छोड़ा गया। उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते विधानसभा जो नया वाला है उससे बहुत ही पहले खड़े मतलब आके रुके हुए थे।
0: कितने बजे की बात होगी? जब
1: सात साढ़े सात के आसपास के बीच,
0: मतलब अंधेरा हो गया था।
1: हाँ, अंधेरा हो गया था। हम लोग वहाँ बैठे थे, साथ में रांची का जो SP है वो हम लोगों के साथ में बैठा हुआ था, वो हम लोगों से कह रहा था कि आप लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहिए और निकल जाइए। तो सर लोग हम लोगों को कुछ कुछ बाहर कर रहे थे, लेकिन ये लोग अचानक से उधर 8-10 गाड़ियाँ आती है पुलिस की, पूरे रोड में पुलिस लगी रहती है, चारों तरफ से घेर लेती है और जहाँ बैठे थे वहाँ का लाइट ऑफ कर देती है और लाठी उठा के ले दनादन जो शुरू करती है, जैसे हम लोगों के साथ जानवरों की तरह मारा जा रहा है, कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। हम लोग इधर से भाग रहे हैं, खेत में उतर रहे हैं तो खेत में भी पुलिस आ रही है, दौड़ा कर मार रही है। और सबसे बड़ा मतलब ये देखिए मैम कि एक भी वहाँ पर महिला पुलिस नहीं है और हमारी बहनों को वो पुलिस मार रही है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा मैम?
0: आप कह रहे हैं लाइटें
1: ऑफ करके, क्योंकि वो चाहता था कि अंधेरा का फायदा उठा के मारा जाए। और ये कह रही थी पुलिस कि यहाँ अच्छा हुआ कि रात में मारे हैं क्योंकि यहाँ मीडिया नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि जब मीडिया रहेगी तभी पुलिस डरेगी। ये झारखंड सरकार ने पुलिस के रूप में गुंडे पाल रखे हैं जो हम लोगों को लाठियों से मरवाते हैं। अरे साहब आप लाठी से नहीं गोली मारिए, गोली मारिए, ना जिंदा रहेंगे ना हम लोग आवाज उठाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। अगर संघर्ष बलिदानों से लिखा जाता है तो हम लोग बलिदान देने के लिए तैयार हैं। क्यों दोस्तों, तैयार हो? हम लोग बलिदान देंगे।
0: ये बताइए कि वहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी, क्योंकि पुलिस का कहना है वहाँ पर धारा लगी हुई थी।
1: पत्थरबाजी नहीं हुई है, ये झूठ बोल रहा है,
2: पत्थरबाजी।
0: आगे आइए बताइए, 7 बजे यानी कि अंधेरा हो गया था, 6 बजे के आसपास राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि कोई लाठी नहीं चलनी चाहिए, आप कह रहे हैं उसके बाद लाठी चली।
3: मैम तकरीबन 7 बज रही थी, अब छात्र लौट रहे थे, जो नेतृत्व कर रहे थे वो लोग
0: लौटना शुरू कर
3: रहे। यस मैम, लौट रहे थे शांतिपूर्वक, पहले नेशनल एंथम हुआ उसके बाद सब छात्र लौटना स्टार्ट कर रहे थे मैम। उसी बीच में मैम 300 से 400 पुलिस बल आई पीछे से, ठीक है, मैं तो पीछे देख नहीं रहा था क्योंकि इतना कस के सब भागने लगे और मैं मारना चालू कर रहे थे वो, कि सब कोई को लेडीज़ को भी मारा जा रहा था, कोई लेडीज़ पुलिस फोर्स भी नहीं थी वहाँ पे।
0: आप कह रहे हैं वहाँ पर आप नेशनल एंथम गा रहे
3: हैं? हाँ मैम, हाँ, पत्थरबाजी जो बोल रहे हैं ना, पत्थरबाजी हुई है, बिल्कुल झूठ बात है मैम, वहाँ पत्थर रहता ही नहीं है मैम। मैम 7-8 फीट के ऊपर से कूदे हूँ मैम, मैं यहाँ चोट लगा हुआ है मुझे, ये आप देख सकते हैं,
0: पैर दिखाइए,
3: पैर में स्ट्रेन है मैम, स्ट्रेन है यहाँ से यहाँ पे, ठीक है।
0: आप ऊपर से कूद गए?
3: कूद गया मैम, देख लीजिए आप। और मैं पुटुस का जो झूठ होता है उस पर गिर गया, मैं गिर गया तो मुझे छात्रों ने ही उठाया था। और रात में पुलिस, बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे कि नहीं आएगी पुलिस, नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन ये पुलिस आई वहाँ तक खेतों में और खेत तक मारा गया है मैम, खेत तक दौड़ा दौड़ा के मारा गया है।
0: और मैंने कुछ तस्वीरों में देखा कि कुछ बच्चे बैठे हुए थे जमीन पर, उनको खींच के
1: जी मैडम, पुलिस तो पुलिस पर मारा गया है, चाह रही थी कि शाम का इंतजार कर रहे
3: मारा गया।
0: और जैसे कैसे एक बार फिर से बताइए
3: मैम, इधर भी हाथ पकड़ लिया गया, इधर भी हाथ पकड़ लिया गया, वैसा मारा गया उन लोगों को, यहाँ तक कि मीडिया के आदमियों को भी मारा गया है, जो लोग दिल्ली से आए हुए हैं उन लोगों को भी मारा गया।
0: एक बात बताओ, आप कहाँ पर बैठे थे, क्या आप विधानसभा के अंदर घुस रहे?
3: नो मैम, गेट नंबर 1 के बाहर बैठा हुआ था मैं,
1: हम लोग सारे से बहुत बाहर थे, अंदर में नहीं थे,
3: बाहर बैठे हुए थे जो रोड है वहाँ पे।
0: यानी कि विधानसभा परिसर, सो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर व्यूअर्स, देयर इज अ न्यू विधानसभा व्हिच इज वेयर द असेंबली वाज इन सेशन। नाउ द मेन गेट इज गेट नंबर 1 वेयर एवरीवन एंटर्स एंड एग्जिट्स। आउटसाइड ऑफ दैट गेट, मतलब उसके अंदर भी नहीं, उसके बाहर आप
3: बाहर
1: में
3: बाहर।
1: हम लोग थे बाहर,
0: आप अंदर घुसने की कोशिश?
1: नहीं, क्यों हम लोग घुसेंगे
3: मैम? यहाँ के छात्र आज मिसाल बन गए हैं पूरे इंडिया के लिए, नेशनल एंथम हो रही है, हम लोग पुलिस, झारखंड पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनका ना हम लोग ऐसा कोई नारेबाजी किए ना पत्थर चलाया हम लोगों ने, उसके बाद भी हमारे ऊपर ऐसा बर्बरता किया गया है। आज बोलते हुए दुख लग रहा मुझे कि हम झारखंड में पैदा लिए
1: मैम, मैं झारखंड,
3: इस तरह का फीलिंग आ रहा है मैम,
1: हम लोग बहुत ही
3: ऐसा लग रहा था कि
1: तरीके से
3: ऐसा लग रहा था कि हमें अंग्रेज राज तो देखा नहीं था, लेकिन जैसा मारा गया ना बच्चों को, मतलब बर्बरता हद पार कर दिया गया मैम, जबकि किसी ने ना पत्थर चलाया। आज मैं देख रहा था कि असामाजिक तत्व के लोग घुस गए थे, इसके वजह से पत्थर चला रहे थे और हमें बलपूर्वक प्रयोग करना पड़ा, ऐसा न्यूज में देखा हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूछ सकते हैं किससे मैम?
0: अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम मनोज यादव है।
0: तो हुआ क्या फिर 7 बजे जब अंधेरा था तो पुलिस ने लाठीचार्ज?
2: बस सबसे बड़ी बात है कि जब अंधेरा हुआ तो करीब 50-60 बस में आया सब रैप के जवान, और वो लोग कुछ मैंने पूछना उछना नहीं था किसी को, जो मिल रहा है उसको मारना है, मैंने किसी से वो स्टूडेंट रहे आम पब्लिक रहे कोई मतलब नहीं है, कौन आंदोलन में था कि नहीं था कोई मतलब नहीं है, खाली मारना शुरू कर दिया। और हम आंदोलन खत्म हो गया था, चुपचाप हम लोग से किनारे में बैठे हुए थे, आए यार पूरा देना शुरू कर दिया।
0: कितने लोगों ने मारा?
2: हमको 5 पुलिस लोगों ने जो है मिल करके पहले ये घुटने ऐसे मार मार करके पहले बैठा दिया जमीन पर, उसके बाद लाठी से मारने लगा। देखिए ये कंधा तो लग रहा था कि टूट गया है उस टाइप का, ये देखिए पूरा ये। और दूसरी बात है कि आप देखिए ये जो पीठ जो है आप देख रहे हैं, ये पूरा पीठ ये करके पूरा जो है ये पूरा पीछे, और ये जो ये देखिए पूरा टाइट हो गया है, यहाँ जांग में भी जो है पूरा टाइट करके एकदम पलट पलट करके मारा है। अब मतलब इतना ही समझिए कि अगर यदि हम उठ, अब वो लोग मार करके थक गया, हम भागे नहीं, अब जो जितना मारना मार लो, क्योंकि इतना मार चुका था जो कि हम भागने लायक थे ही नहीं, तो जो करना है सो तुम्हीं को करना है, वहीं पर पड़े रहे जाओ जो करो। फिर एक जो है उधर से मेरा साथी आया, उसको उठाया वो वार टेम्पू में फिर वो बिठाया, उसके बाद यहाँ घटनास्थल पर लेके।
0: ये करने से पहले लाठीचार्ज जब शुरू हुआ उसके पहले कुछ लाउड हेलर पे कुछ आवाज आई, कुछ
2: अनाउंस प्रकार का कोई अनाउंसमेंट नहीं?
0: हट जाइए
2: भाग जाइए, आप जो है आप लोगों का प्रदर्शन खत्म हो चुका है, ऐसी बातों को करना चाहिए था ना। अब कोई भी लड़का लोग बताएगा कि कैसे हमको बेरहमी से मारा जा रहा था, तमाम लोग जो है सो देख रहे थे।
0: आपने भागने की कोशिश नहीं?
2: हम क्यों भागो बाबू? अरे बाबा आपको 5 आदमी घेर के मारेगा तब भाग पाइएगा। अब हम निहत्था हैं, उनके पास लाठी है, उनके पास में राइफल है, जो कुछ है सब, कि अगर यदि हम भागने की कोशिश करते गोली मार देता, तो मार लो भाई लाठी मार लो जितना मारना है, और बेहतर होता गोली मार देता भाई, लाठी से क्यों मार रहे हो तड़पा तड़पा करके बच्चों को? एक तो हम आपसे एक तो बता रहे हैं जन्मदिन का बढ़िया तोहफा दिया गया, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था, हम लोग तो सेलिब्रेट करके उनको बधाई दिए, और मैं बता रहा हूँ इसके लिए आपका ये चैनल पर मैंने जो है सो उनको बकायदे केक खाते हुए बच्चों को, और हैप्पी बर्थडे का उनको होगा आपके पास में वीडियो, हम लोग बर्थडे का उनको बधाई दे रहे थे और हम लोगों को गिफ्ट मिल रहा था।
0: The most disturbing part of the police action comes from the women. Dragged, beaten, shoved into the fields, and all of this when no female police was present.

0: There were several women who were among the protesters who got beaten on Monday night, and their claim is that there were no women police officers, no women police, women cops among those who took them out, who conducted a lathi charge. One such lady is here with us. Aapke pair mein bhi chot lagi hai, aapko lathi padi?
1: Ji ma'am.
0: Kya hua?
1: Ma'am, hum log peacefully baith kar protest kar rahe the wahan pe. अचानक से पुलिस आती है, फोर्सेस ढेर सारे, कोई मेल वहाँ पे फीमेल पुलिस नहीं थी. अचानक से लाठी बरसाई गई हमारे ऊपर. हम लोगों ने अपने बचाव के लिए राष्ट्रगान को गाना शुरू किया, फिर भी इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ. ताबड़तोड़ हम पे लाठियाँ बरसाई जा रही थी. ऐसे में हमारे सर लोग और जितने भी भाई लोग थे वो प्रोटेक्शन करके हम लोगों को वहाँ से निकाले हैं, लेकिन बचाव में उन्हें काफ़ी चोट आई है. और उसके बाद जब हम लोग वहाँ से निकले, मतलब क्या ही बोले आपको, बहुत मुश्किल से रात में घर पहुंचे हैं. फिर उसके बाद
0: तो आप राष्ट्रगान गा रहे थे और उसके बावजूद लाठी चली.
1: जी जी मैम.
0: और आप सड़क पर बैठे हुए.
1: जी.
0: तो लाठी में आपको क्या, लाठी चार्ज हुआ, घसीटा गया, क्या हुआ?
1: ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई ही जा रही थी. पैर पे लग रहा है, कहाँ लग रहा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं था. बहुत सारे भाई का तो सर भी फटा, गए टंगा टंगा कर. दिल्ली में तो कम से कम था कि वहाँ लोग खुद के पैरों पे चल के भी जा रहे थे. यहाँ की सरकार की तो पता नहीं क्या मनसा थी, इस कदर मार रहे थे कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, सीधा बेहोश. उनको 5-6 लोग उठा उठा कर लेकर जा रहे हैं. ये कल सुबह से लेकर कल रात तक का यही नज़ारा रहा है वहाँ पे. उसके बाद मतलब ये सरकार क्या है, इसको कोई समझ नहीं है. ना ही हमारे संविधान का सम्मान है, ना ही हमारे राष्ट्र झंडा का सम्मान है, ना ही हमारे राष्ट्रगान का सम्मान है. क्या है ये सरकार?
0: क्योंकि पुलिस कह रही है उनको ये अंदेशा था कि कहीं विधानसभा के अंदर ना घुस जाए.
1: मैम, हम लोग विधानसभा के अंदर घुसने का प्रयास ही नहीं किए हैं. हम लोग इंतजार कर रहे थे वहाँ पे, इंतजार किए हैं वहाँ पे. अगर पुलिस ये भी हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाती है कि पथराव किए हैं, आप चलिए अभी भी चलिए रोड पे, एक भी पत्थर दिख गया हो तो कहिएगा. साफ सुथरा रोड पे कहीं पत्थर है, आप जाके देखिए, सर्च करिए आप इस चीज को.
0: और सिटी पुलिस ने तो आपको आश्वासन दिया था, तो फिर आपने बोला नहीं कि महिला पुलिस किधर है, पत्थर क्यों, हमें क्यों मारा जा रहा है?
1: मैम, इतना बोलने का वो लोग नहीं समय दिए. हम लोगों को उस वक्त बचना था. अगर इतना शायद बोलने जाते तो यहाँ पर दोबारा हम बोलने लायक भी नहीं रहते. जिंदा रहते कि नहीं रहते इसकी तो कोई गारंटी नहीं है. इस तरीके से हम लोगों को मारा पीटा गया है.
0: एंड इट्स नॉट जस्ट पीपल हु वर अडल्ट्स, वुमेन, बट इवन चिल्ड्रन हु गॉट कॉट इन दैट क्रॉस फायर. आपको कल लाठी पड़ी, आप कहाँ दिन में थी वहाँ पर जहाँ पर प्रदर्शन?
2: जो पुलिस हमको घुसने नहीं दे रही थी जब वहाँ पर हम बैठे थे, और दिन से हम कुछ भी नहीं खाए थे. सुबह हम 7 बजे निकले हैं, बिना पानी पिए हुए रोड चलते बने हैं. तब वहाँ जाके बैठे तो हमको पूरी दिया गया था कि आप थोड़ा साइड हो जाइए बोल के दिया गया था. और पूरी जैसा मुँह में लेने गए तो हमको जो आंसू गला है ना, दो तो फुटाया गया, हम अकबक हो गए. तभी पुलिस दौड़ के आ गई, हमारे पैर पर लाठी मारी है, पैर में लाठी मारी है. मेरा पैकेट है ना पूरा, कहाँ फेंका गया कुछ पता नहीं. पब्लिक ने हमारे पीछे से पैकेट पकड़ के मुझे दिया है. हमारे बच्चे को कुछ दिख रहा नहीं था आंसू के गोले से, इसको भी लाठी पड़ी है. फिर हमको ना हो गए, फिर हम अंदर गए,
0: बच्चे को मार,
2: हाँ इसको भी मार पड़ा है, इसको भी कमर में, पुलिस कमरे में बहुत मारी है. और आंसू का गोला से ये बच्चा पूरा अंधा हो गया था, इसको कुछ दिख रहा नहीं था.
3: मैंने आंसू का गोला जैसे गिरा ना मैम, उसके बाद से मुझे कुछ दिखना ही बंद हो गया. और दिखना बंद हो, मैं धीरे धीरे आँख खोलने लगा तो पुलिस, एक पुलिस नहीं मैम, 3-4 पुलिस आई डंडा लेके, मेरे को पीछे बहुत जोर से मारी 2-3 बार. और याद तक कि नहीं मैम, लेडीज लोग को जेंट्स पुलिस मार रही है, जबकि एक भी महिला पुलिस नहीं है. मैं 3 बैरिकेड तोड़ा, मैं पीछे ही था, मैं आज तक नहीं देखा एक महिला पुलिस. सब लेडीज लोग को तो गंजी पकड़ के मार रहे हैं मैम, मेरे को बहुत जोर से मारे. हम लोग जंगल जंगल भागे हैं. IPS और IPS सर हम लोग के पीछे भाग रहे हैं. यहाँ पे भी
2: IPS सर थे. हम लोग जैसा जंगल में घुसे ना पीछे तरफ गेट से, पूरा कादा था, मेरा तो पैर टूट जाता, इतना मट्टी धसक गया.
0: आपको भी लेडीज पुलिस नहीं?
2: नहीं, लेडीज पुलिस सब जेंट्स पुलिस. और जैसा कि पूरा इतना बड़ा मट्टी गिरा, फिर भी हम खदड़ खदड़ के अंदर चले गए. तो अंदर में हमें एक तो आदमी बोला कि मैडम जान बचाना है तो आप यहाँ से निकल जाओ, यहाँ 500 पुलिस आई हुई है, इतना मारेगा ना कि आप निकल नहीं पाओगे.
0: तो बीमार भी आपका ट्रीट?
2: मेरा, मैं लीवर कैंसर किडनी खराब है मैडम, ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है. और ट्यूमर है पेट में ना, उसका ऑपरेशन अभी गर्मी

0: आबाद होगा, अभी तुरंत था, लेकिन ये बच्चों को मैं रोड में बैठता देखी तो ऑपरेशन को रोक दी और मैं बोली बच्चों को समझ के आती हूँ हमारे झारखंड के बच्चों को क्या हुआ है।
1: आपको बोला नहीं आपने पुलिस को कि मेरा इलाज चल रहा है?
0: पुलिस सुनता नहीं है ना, पुलिस हमको देख नहीं रहा है।
2: मैंने बोला था कि मम्मी कैंसर मरीज है, उनका थैला लगा, किडनी की मरीज है, अब प्लीज इनको ना मारे। मैं हाथ जोड़ के भी विनती किया, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने वो प्लास्टिक का डंडा नहीं था, मैं बांस का डंडा था, जबकि कानून के हिसाब से प्लास्टिक का डंडा होना चाहिए, बांस के डंडा से मारा गया। और यहाँ पे भी मैम हम लोग को सोने नहीं दिया गया। रात 3 बजे तक हम लोग को पुलिस पीछा की बोली तुम लोग को डिटेन करके लेके जाएंगे, तुम अगर यहाँ प्रदर्शन करोगे तो तुम्हारे पैर हाथ तोड़ देंगे हम लोग।
0: रात में 3 बजे यहाँ पूरा पुलिस भर्ती थी हम लोग को उठाने के लिए, हम जगह बैठे थे।
1: When the lathi charge happens in the middle of the night, then there is no way to discriminate between who comes in the way of the lathi. And which is why, whether it was women, whether it was children, whether it was protesters who had traveled from across the country, everyone got the short end of the stick, quite literally. आप वहाँ पर रात को मौजूद थे?
3: जी मैं मौजूद था।
1: तो फिर क्या हुआ?
3: वहाँ कोई ऐसी घटना नहीं थी। शाम को लोग आ जा रहे थे, पुलिस भी सामान्य, हम लोग भी सामान्य, हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सका था, किसी तरह की कोई घटना होगी, कोई ऐसी बात नहीं थी। 7 बजे के करीब पुलिस ने भेजना कहा कि जाइए निकलिए, और लाठी लेके पीछे से काफ़ी लोग आ गए पुलिस वाले, तो लोग लाठी ऐसे करने लगे, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से,
1: पीछे से आई
3: पीछे से आ गए उस साइड, दूसरी साइड से, और रोड पर विधानसभा से दूर थे थोड़ा, तो वो रोड पर जो अंदर का रोड है वहाँ पर, वहाँ निकलने लगे, आगे होने लगे, जब लाठी ऐसे करने लगे तो लोग चलने लगे, तो वो मारने लगे, हम लोग हाथ जोड़ने लगे, चलने लगे, हाथ जोड़ते उनको मारा, खेतों की ओर तक मारते आए, और आगे तो उन्होंने कहर डाल दिया, जब अंधेरा आया, अंधेरे की साइड और खेतों की साइड, हम लोगों को बर्बरता से, ये देखिए 2 लाठी यहाँ पर मारी उन्होंने। रात से दवा लग रहा है तो थोड़ा ठीक हुआ है, उसके बाद मेरे हाथ
1: पीठ पर लाठी पड़ी।
3: जी नाम राजेश हिंदुस्तानी है, हरियाणा हिसार से युवाओं का समर्थन करने आया हूँ, क्योंकि पूरा भारत मेरा परिवार है।
1: तो उस वक्त जब लाठी चल रही थी तो आपने बोला नहीं कि भाई हम तो यहाँ पर, आपके हाथ में तिरंगा?
3: तिरंगा मेरे हाथ में 15 साल से है जी।
1: और उसके बावजूद लाठी?
3: उसके बावजूद पड़ी, उसके मैं हाथ भी जोड़ता रहा, जब सिर की ओर एक लाठी इधर से आया तो मैं जा रहा हूँ, रास्ता रोक के मार रहे थे मैडम, जब जाने का रास्ता है इधर से निकल रहे हैं तो दूसरी साइड से आके मार रहे हैं, हमने ऐसी बर्बरता जिंदगी में नहीं देखी। जब उन्होंने मारा तो एक सिर की ओर लगते मैं थोड़ा ऐसे झुका तो वो मेरे ही साथ में जो तिरंगा था ऐसे उसमें प्लास्टिक की डंडी में, ये वो ऐसे लगा, वो दूर जा पड़ा तो मैं तिरंगा उठाने के लिए, मैं सर देश का झंडा, मैं उठा दो प्लीज, मैं उठाने दो, मैं ऐसे बोला, तो उन्होंने उसको उठाने की बजाय मुझे यहाँ दे मारा डंडा, ये मुद्रिका अड़ गई तो डंडा मेरे ऐसे लगते हुए, ये देखिए। उसके बाद फिर मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि तिरंगा मेरी आन बान शान है, मामा के लड़कियों की, बुआ के लड़कों की शादियों तक मैं माँ बेटे नहीं गए, तिरंगा लेके नहीं आना, पागल सा दिखेगा, हम नहीं गए, 15 साल से मेरे हाथ में आना है बिना प्रोटेस्ट के, सामान जाम बाजार बस स्टैंड रेलवे स्टेशन।
1: तो ये दिन भर में फिर जो लाठी चार्ज नहीं हुआ था, फिर वो शाम को
3: 7 बजे हुआ, और बगैर किसी मतलब के हुआ, बगैर वार्निंग के हुआ, और जब वहाँ से मैं 30 बार उनको रिक्वेस्ट ऐसे करते करते करने लगा तो मैडम तिरंगे के ऊपर से रोनते हुए आए, वो सीन मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा, मेरे देश का तिरंगा उन्होंने पैरों से रोनते हुए, मैंने कहा मेरे को दे दो, उठाने दो, मैंने मेरे पिछले पार्ट में डंडों से दकियाते चले गए ऐसे करके आगे, और उसको रोंदा। 15 साल में कभी तिरंगा मैंने गिरने नहीं दिया, झारखंड की जालिम पुलिस ने, मेरा देश का तिरंगा जो शहीदों का अरमान है, उन्होंने तिरंगा इतना अपनी जान दे करके लिया था, वो तिरंगा भी रोंदा। सबसे था मुझे 2 डंडे और मार लेते, मैं घायल होके मर जाता तो गम नहीं था, लेकिन मेरे तिरंगे को रोंदा, भगवान माफ नहीं करेगा।
1: एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट हाउ दिस वाज कंप्लीटली अनप्रोवोक्ड एंड व्हाट हैपेंड अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस, अनप्रोवोक्ड एंड विदाउट वार्निंग द लाठी चार्ज स्टार्टेड। But how will the government answer the children of Jharkhand? Why were they beaten in the cover of dark? With video journalist Ashwini and Praveen Yadav in Ranchi, Patanjali Joshi, NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
2: रियली
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: जानते हैं मैं Elite Matrimony क्यों recommend करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
6: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
5: आप कहाँ से हैं?
6: हरियाणा।
5: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
6: डेढ़ महीने पे।
5: आपकी फैमिली है?
6: कौन?
5: बच्चे हैं?
6: 3 साल।
5: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
6: बहुत।
5: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
6: सिनेमा घर तक अलाउड।
5: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
7: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
8: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
9: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
10: अरे मेरे राजा,
11: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
12: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
11: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा।
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, every day.
4: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
5: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
6: हरियाणा।
5: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
6: डेढ़ महीने पे।
5: आपकी फैमिली है?
6: और
5: बच्चे हैं?
6: 3 साल।
5: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
6: बहुत।
5: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
6: सिनेमा घर तक अलाउड।
5: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
4: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए? 28, 29, 30।
4: तुम भी कैसे? टाइगर जैसे।

0: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है। वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन ना बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है। जब तक लाजवाब ना बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
2: रियली
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: जानते हैं मैं Elite Matrimony क्यों recommend करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
5: सेलिब्रेटिंग एक्सलेंस अक्रॉस जर्नलिज्म एंड इनोवेशन, एनडीटीवी स्टील्स द स्पॉटलाइट एट द 12th बीसीएस रत्न अवार्ड्स 2025-26। बेस्ट इंग्लिश न्यूज चैनल ऑफ द ईयर, एनडीटीवी 24/7। बेस्ट न्यूज ऐप ऑफ द ईयर, एनडीटीवी। बेस्ट इलेक्शन कवरेज ऑफ द ईयर, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the Network of Impact.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: A few days ago, 17-year-old Janmoni Kanwar left her home in rural Assam and went to Delhi carrying a sporting dream. She returned to Assam 3 days later carrying a national karate gold medal. But there was no home to return to. The Assam floods had washed away her family's tiny home and their tinier fishery. She found her family living in a tent under a tarpaulin on an embankment. A family that once sold 2 buffaloes and kept their small little fishery going just to fund Janmoni's karate dreams. Today, against extraordinary odds, she is a national karate champion. Janmoni, pehle aapke karate gold medal ke liye bahut bahut mubarak ho. NDTV par aapka swagat hai, Janmoni.
1: Thank you, sir.
0: Janmoni, mera pehla sawal, gold medal lekar jab ghar pahunchi aap Assam mein, सबसे पहले आपने क्या देखा, क्या हुआ था?
1: सर, मैं जब गोल्ड मेडल लेके असम में आया था, तब हमारा गांव लोग सब मुझे लेने के लिए गया था, थोड़ा ढोल बजरा बजाकर मस्ती की उन लोगों ने।
0: लेकिन आपका घर कहाँ था? आप घर बह गया था? आपके पेरेंट्स जो थे, आपके माता पिता जो थे, वो एक टेंट में रह रहे थे?
1: हाँ सर, घर तो अभी भी पानी के नीचे ही है। हम लोग तो अभी भी रास्ते पर टेंट के नीचे हैं।
0: आपका घर बह गया, अभी आप और आपका परिवार कहाँ रह रहे हैं? अभी भी आप एक टेंट में रह रहे हैं?
1: हाँ सर, अभी भी टेंट पे ही है।
0: और आपका घर कहाँ है? क्या हुआ आपका घर का?
1: घर का अभी तो पूरा बुरा हालत है, वो घर के अंदर पानी घुसा हुआ है।
0: तो आपको कैसे लगा जानमुनी जी, जब आप घर पहुंचे थे और आपका घर पूरा पानी के अंदर था, आपके माता पिता एक टेंट में रह रहे थे, आपको कैसे लगा? आप गोल्ड मेडल लेके आसाम वापस आ रहे थे, आपको कैसे लगा ये सब देख के?
1: बहुत बुरा लगा था, क्योंकि जिस बार भी गया था खेलने के लिए, तब मैं गोल्ड मेडल लेके तो अपने घर में ही जाता था, पर अब इस बार तो बांध की वजह से हम रास्ते पे ही था, इसलिए थोड़ा सा मतलब दुख की बात है ना ये सर।
0: जब आपने अपना घर और सब कुछ ऐसे पानी के अंदर देखा बाढ़ में, चंदमुनि, क्या लगा कि कराटे का सपना भी खत्म हो गया? आपको ऐसे कभी भी लगा जब आप दिल्ली जा रहे थे?
1: हाँ सर, लगा था। तो बांध की वजह से पूरा जो सपना था ना, वो टूट गया था।
0: तो आपका परिवार ने आपको क्या बताया? आपको सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया आपको?
1: हाँ सर, बहुत सपोर्ट किया, और आलोक पांडे सर ने भी बहुत सपोर्ट किया।
0: और आपके परिवार ने, जानमुनि जी, हमने पढ़ा कि आपके परिवार ने आपके लिए जो 2 भैंस थे वो बेच दी, वो एक छोटा सा फिशरी आपका है आपके घर में, उसको भी रखा ताकि आपका जो कराटे का सपना था वो पूरा हो जाए। क्या ये सच है? आपके लिए ये सब किया?
1: हाँ सर, ये सच है।
0: कैसे हुआ ये सब, थोड़ा डिटेल में बताइए, कैसे आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया ऐसे?
1: सर, मुझे मेरे परिवार ने कि मुझे बताया कि तू खेल सकती है, तू आगे बढ़ सकती है। और मुझे ये बताया कि बांध की वजह से अपना सपना रुक नहीं जाना चाहिए। और तभी अलग पांडे सर आया और मुझे बोला कि तू खेल पाएगी, तू दिल्ली जा, मैं टिकट वगैरह और रूम की सारी जो तुम्हें चाहिए वो मैं दिला दूंगी, अच्छा बोला था।
0: जब आप असम वापस आए घर पे, जानमुनि, अपने माता पिता से मिले, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो खुश थे? घर तो पानी के अंदर है, लेकिन वो आपको गोल्ड मेडल लेकर आए हुए देख के खुश थे? उन्होंने क्या बोला आपको?
1: हाँ सर, बहुत खुश थे। उन लोगों की आंखों से आंसू निकल गए थे।
0: क्या बोले हो आपको?
1: खुशी से मतलब ये बोला कि इतनी तकलीफ से जाकर तू दिल्ली से नेशनल तक गोल्ड मेडल लेके आए, वही हमारे लिए सुख की बात है, ऐसा बोला।

0: ये फ्लड्स के बाद भी आप ट्रेनिंग करती रही जानमोनी जी, इतनी हिम्मत कहाँ से आए आपको? ये जो हो रहा है अभी असम में, ये नेशनल मीडिया में कहीं दिख दिख नहीं रहा। एनडीटीवी पर हम लगातार कवर कर रहे हैं कि असम में बाढ़ कैसे हो रहा है। आपको इतनी हिम्मत कहाँ से आई? आपने ट्रेन किया, बाढ़ के अंदर में भी ट्रेन किया आपने?
1: हाँ सर, क्योंकि मुझे मेरा परिवार पूरा सपोर्ट करता है ना, इसलिए मुझे साहस मिला कि तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ।
0: और जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, क्या आपको कभी भी लगा कि आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा?
1: हाँ सर, ऐसा तो लगा था बांध की वजह से।
0: जब गोल्ड मेडल जीते आपने जानमोनी जी, सबसे पहले परिवार में किसको याद किया आपने, किसको फोन किया आपने?
1: मैं अपने भाई को सबसे पहले कॉल किया था।
0: और उन्होंने क्या बोला आपको?
1: उसने मुझे बताया कि सच सच में क्या, मैंने बोला हाँ भाई सच, मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया, ऐसा बोला था। वो तो खुशी से पागल हो जा रहे थे।
0: तो अब सिचुएशन क्या है आपके गांव में जानमुनी? आपका घर अभी भी पानी के अंदर है? अभी भी आप और आपके परिवार एक टेंट में रह रहे हैं?
1: हाँ सर, अभी भी घर पानी के अंदर ही है। हम अभी भी, हमारा परिवार और गांव के लोग अभी टेन के नीचे ही रह रहे हैं।
0: तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, कब तक आप घर वापस जा पाएंगी?
1: 2 महीने के बाद सर।
0: तो 2 महीने के लिए आप एक टेंट में रहेंगी जानमोनी,
1: हाँ सर,
0: और आपका आपका ट्रेनिंग लगातार चलेगा इसमें भी?
1: हाँ सर, चलेगा चलेगा रास्ते पे ही।
0: आप रास्ते में ट्रेन करेंगी?
1: हाँ सर,
0: आखिरी सवाल जानमोनी,
1: हाँ सर,
0: आपका अगला
1: पूछिए।
0: सपना क्या है? आपने एक नेशनल मेडल जीता है अभी, इंडिया के लिए मेडल है क्या आपका नेक्स्ट गोल? आपका सपना क्या है, फ्यूचर ड्रीम क्या है आपके लिए?
1: सर, मुझे अगली बार इंटरनेशनल में जाकर गोल्ड मेडल लेना है, असम के लिए रिप्रेजेंट करना है सर, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना है।
0: हम आपको बहुत बधाई देते हैं आपके टैलेंट के लिए जानमुनी जी, आपकी बहादुरी के लिए, और हम आपको आपकी कहानी पूरा इंडिया तक जाएगा अभी हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू
1: थैंक यू
0: अस
1: सर,
0: जानमोनी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: electricity bill paid.
1: Really?
0: Your mobile recharge is done.
1: How?
0: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
1: It's the Mahi way.
2: Hindustan mile Hindustan se
3: देश का टायर जेके टायर
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी एलीट मैट्रिमोनी इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस मोदो एलीट
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात
6: वाओ मामा क्या स्वाद है
7: अरे मेरे राजा
8: Celebrating excellence across journalism and innovation. NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the Network of Impact.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: वेट सेट आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: के तरीके फर्क है। तमाम लोग ईश्वर को मानते हैं, तमाम लोग ईश्वर को नहीं मानते। और छोड़िए, जो हिंदू जी ने लोग कहते हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास ईश्वर में या देवी देवता में नहीं है। तो कुल मिलाकर के जब हाउस व्यवस्थित नहीं था तब उन्होंने ये कानून पास करा लिया, और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है। ये अपनी बात लाद रहे।
1: And with that, it's time for us to slip in a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.

0: Tamil Nadu assembly speaker JCD Prabhakar has triggered a storm after attending an anti-abortion rally as its chief guest in Tamil Nadu. Now his presence at the Catholic organized National March for Life and his remarks against abortion have, as you can imagine, ignited a debate over whether a constitutional office holder like the assembly speaker should be lending his political weight to a movement challenging a legally protected reproductive right in this country. Abortion is legal in India. Now, let's be very clear, viewer. Prabhakar has every right to his personal beliefs. He is free to oppose abortion and be pro-life. But when the Speaker of the Tamil Nadu Assembly becomes a chief guest at a religiously organized anti-abortion rally, personal belief enters very, very different territory. Remember, abortion, I repeat, is legal in India. Parliament has progressively expanded access under the Medical Termination of Pregnancy Act, including up to 24 weeks in specified circumstances. India's courts have repeatedly upheld reproductive choice, dignity, privacy, and bodily autonomy. That's why the Tamil Nadu speaker, JCD Prabhakar, declaring that life begins at conception, isn't simply another politician at another religious event. This movement explicitly seeks a society without abortion. That's where he's been chief guest. And that's where this becomes politically complicated and combustible. Tamil Nadu's ruling establishment under Chief Minister Vijay cannot speak the language of progressive politics, women's empowerment and personal liberty while one of its most important constitutional figures lends his presence to a campaign questioning an established reproductive right. Prabhakar can oppose abortion, I repeat, millions of people in this country do, but the speaker represents women who oppose abortion and women who may desperately need one. His belief is personal, but rights belong to everyone. A few days ago, 17-year-old Janmoni Konwar left her home in rural Assam and went to Delhi carrying a sporting dream. She returned to Assam 3 days later carrying a national karate gold medal. But there was no home to return to. The Assam floods had washed away her family's tiny home and their tinier fishery. She found her family living in a tent under a tarpaulin on an embankment. A family that once sold 2 buffaloes and kept their small little fishery going just to fund Janmoni's karate dreams. Today, against extraordinary odds, she is a national karate champion. Janmoni, pehle aapke karate gold medal ke liye bahut bahut mubarak ho. NDTV par aapka swagat hai, Janmoni.
1: Thank you, sir.
0: Janmoni, mera pehla sawal, gold medal lekar jab ghar pahunchi aap Assam mein, sabse pehle aapne kya dekha, kya hua tha?
1: Sir, main jab gold medal leke Assam mein aaya tha, तब हमारा गांव लोग सब मुझे लेने के लिए गया था, तो थोड़ा ढोल बजरा बजाकर मस्ती की उन लोगों ने।
0: लेकिन आपका घर कहाँ था? आप घर घर बह गया था? आपके पेरेंट्स जो थे, आपके माता पिता जो थे, वो एक टेंट में रह रहे थे?
1: हाँ सर, घर तो अभी भी पानी के नीचे ही है। हम लोग तो अभी भी रास्ते पर टेंट के नीचे है।
0: आपका घर बह गया, अभी आप और आपका परिवार कहाँ रह रहे हैं? अभी भी आप एक टेंट में रह रहे हैं?
1: हाँ सर, अभी भी टेंट पे ही है।
0: और आपका घर कहाँ है? क्या हुआ आपका घर का?
1: घर का अभी तो पूरा बुरा हालत है, अभी वो घर के अंदर पानी घुसा हुआ है।
0: तो आपको कैसे लगा जानमुनि जी, जब आप घर पहुंचे थे और आपका घर पूरा पानी के अंदर था, आपके माता पिता एक टेंट में रह रहे थे, आपको कैसे लगा? आप गोल्ड मेडल लेके आसाम वापस आ रहे थे, आपको कैसे लगा ये सब देख के?
1: बहुत बुरा लगा था, क्योंकि जिस बार भी गया था खेलने के लिए तब मैं गोल्ड मेडल लेके तो अपने घर में ही जाता था, पर अब इस बार तो बाढ़ की वजह से हम रास्ते पे ही था, इसलिए थोड़ा सा मतलब दुख की बात है ना ये सर।
0: जब आपने अपना घर और सब कुछ ऐसे पानी के अंदर देखा बाढ़ में, चंदमुनी, क्या लगा कि कराटे का सपना भी खत्म हो गया? आपको ऐसे कभी भी लगा? जब आप दिल्ली जा रहे थे?
1: हाँ सर, लगा था तो बान की वजह से पूरा जो सपना था ना वो टूट गया था।
0: तो आपका परिवार ने आपको क्या बताया? आपको सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया आपको?
1: हाँ सर, बहुत सपोर्ट किया, और आलोक पांडे सर ने भी बहुत सपोर्ट किया।
0: और आपके परिवार ने, जानमुनी जी, हमने पढ़ा कि आपके परिवार ने आपके लिए वो जो दो भैंस थे वो बेच दी, वो एक एक छोटा सा फिशरी आपका है आपके घर में, उसको भी रखा ताकि ताकि आपका जो कराटे का सपना था वो पूरा हो जाए। क्या ये सच है? आपके लिए ये सब किया?
1: हाँ सर, हाँ सर, ये सच है।
0: कैसे हुआ ये सब, थोड़ा डिटेल में बताइए, कैसे आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया ऐसे?
1: सर, मुझे मेरे परिवार ने कि मुझे बताया कि तू खेल सकती है, तू आगे बढ़ सकती है, और मुझे ये बताया कि बान की वजह से अपना सपना रुक नहीं जाना चाहिए। और तभी अलक पांडे सर आया और मुझे बोला कि तू खेल।

0: तो खेल पाएगी। तो दिल्ली जा, मैं टिकट वगैरह और रूम की सारी जो तुम्हें चाहिए वो मैं दिला दूंगी। अच्छा बोला था।
1: जब आप असम वापस आई घर पे जानमुनी अपने माता पिता से मिले तो उनका क्या रिएक्शन था? वो खुश थे? घर तो पानी के अंदर है लेकिन वो आपको गोल्ड मेडल लेकर आए हुए देख के खुश थे? उन्होंने क्या बोला
0: हाँ
1: आपको?
0: सर, हाँ सर, बहुत खुश थी। उन लोगों की आंखों से आंसू निकल गए थे खुशी
1: क्या बोले हो आपको?
0: से। मतलब ये बोला कि इतनी तकलीफ से जाकर तू दिल्ली से नेशनल तक गोल्ड मेडल लेके आए, वही हमारे लिए सुख की बात है, ऐसा बोला था।
1: ये फ्लड्स के बाद भी आप ट्रेनिंग करती रही जानमुनी जी, इतनी हिम्मत कहाँ से आए आपको? ये जो हो रहा है अभी असम में, वे नेशनल मीडिया में कहीं दिख नहीं रहा। एनडीटीवी पर हम लगातार कवर कर रहे हैं कि असम में बाढ़ कैसे हो रहा है। आपको इतनी हिम्मत कहाँ से आई? आपने ट्रेन किया, बाढ़ के अंदर में भी ट्रेन किया आपने?
0: हाँ सर, क्योंकि मुझे मेरा परिवार पूरा सपोर्ट करता है ना, इसलिए मुझे साहस मिला कि तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ।
1: और जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, क्या आपको कभी भी लगा कि आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा?
0: हाँ सर, ऐसा तो लगा था बांध की वजह से।
1: जब गोल्ड मेडल जीते आपने जानमोनी जी, सबसे पहले परिवार में किसको याद किया आपने? किसको फोन किया आपने?
0: मैं अपनी भाई को सबसे पहले कॉल किया था।
1: और उन्होंने क्या बोला आपको?
0: उसने मुझे बताया कि सच सच में क्या, मैंने बोला हाँ भाई सच, मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया, ऐसा बोला था। वो तो खुशी से पागल हो जा रही थी।
1: तो अब सिचुएशन क्या है आपके गांव में जानमुनी? आपका घर अभी भी पानी के अंदर है? अभी भी आप और आपके परिवार एक टेंट में रह रहे हैं?
0: हाँ सर, अभी भी घर पानी के अंदर ही है। हम अभी भी, हमारा परिवार और गांव के लोग अभी टेंट के नीचे ही रह रहे हैं।
1: तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? कब तक आप घर वापस जा पाएंगी?
0: 2 महीने के बाद सर।
1: तो 2 महीने के लिए आप एक टेंट में रहेंगी जानमुनी,
0: हाँ सर,
1: और आपका आपका ट्रेनिंग लगातार चलेगा इसमें भी?
0: हाँ सर, चलेगा चलेगा रास्ते पे ही।
1: आप रास्ते में ट्रेन करेंगी?
0: हाँ सर,
1: आखिरी सवाल जानमुनी,
0: हाँ सर,
1: आपका
0: पूछिए।
1: अगला सपना क्या है? आपने एक नेशनल मेडल जीता है अभी, इंडिया के लिए मेडल है क्या आपका नेक्स्ट गोल? आपका सपना क्या है, फ्यूचर ड्रीम क्या है आपके लिए?
0: सर, मुझे अगली बार इंटरनेशनल में जाकर गोल्ड मेडल लेना है, असम के लिए रिप्रेजेंट करना है सर, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना है।
1: हम आपको बहुत बधाई देते हैं आपके टैलेंट के लिए जानमुनी जी, आपकी बहादुरी के लिए, और हम आपको आपकी कहानी पूरा इंडिया तक जाएगा अभी हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू
0: थैंक यू
1: अस
0: सर,
1: जानमोनी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
1: ब्रेडस्टिक आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: और
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
1: This location from Tel Aviv
0: brought clarity right now, to complex issues of national security and international affairs.
2: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
3: The Ayatollah Khamenei is gone.
4: There has been a missile attack right behind you,
5: and we need to rush into a shelter.
6: Good evening and welcome. Thanks very much for tuning in to NDTV. I'm Padmaja Joshi, and as always, on the day's biggest story, the buck stops here. Jharkhand is a story that everyone is talking about today on this extremely rain-washed evening. You would think that after the rain and the lathi charge, confidence and enthusiasm would be at an all-time low here at the Jaipal Munda Stadium in Ranchi. But far from it, the people seem to have regrouped, re-energized, and they are already planning what to do next. Cultural performances are taking place here. People have come right back, many of them bandaged, injured, many of them who have come straight from hospital, again to sit here to make it a point that no one thinks that they are going to be beaten down or silenced. They are talking about how Jharkhand police may have hit them, but they are never going to be silenced. And this is what the people of Jharkhand are trying to say. But the moot question still remains. Did a lathi charge happen in Jharkhand at all? It's said often that offense is the best form of defense, but sometimes denial is so much better. Just say it never happened. That is what the Congress seems to be doing right now. You've got ministers in the Jharkhand government saying, we did not use force despite the fact that we were being provoked. And look at the chronology. Yesterday at around 5:50, Rahul Gandhi tweeted, after the first few rounds of lathi charge had happened, he tweeted that we do not believe in the use of force. We want the Jharkhand government to engage with the students of the state. Anyone who protests peacefully has the right to do so. Just an hour later, as soon as darkness descended, the police came out. Students say that they were beaten under the cover of darkness without any provocation. They say that we have always adhered to these key tenets of the protests in Jharkhand, that they are not going to attack anyone, they are not going to abuse, and they are not going to ask for anyone's resignation. But despite all of that, they were beaten, they were dragged. Many women say that their clothes were also torn. So at this point, is this a good strategy or simply a state of denial on part of the Congress?
7: हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने देखा होगा, एक बैरियर पार किया, दो बैरियर पार किया, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ।
8: भी खुद कहे कि उन पर पैलेट गन यहाँ पर दिल्ली में छोड़े गए, लाठियाँ बरसाई गई, एक बैरिकेड तोड़ने पर, जबकि झारखंड में आठ बैरिकेड छात्रों ने तोड़ा, उन संयम बरता उन लोगों ने, विधानसभा के अंदर जाने की जब कोशिश हुई तब पुलिस ने थोड़ा बहुत कुछ हल्का बल प्रयोग किया जो कि नहीं करना चाहिए था।
2: हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, हम भी जो बिगिनिंग में हमारा स्टैंड था तब से अब तक एक ही स्टैंड है और हमारे तीन मुद्दे पहले से ही है।
9: राहुल जी ने झारखंड
10: का सरकार राहुल गांधी जी वहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, राहुल गांधी जी वहाँ होम मिनिस्टर नहीं है, दिल्ली में क्या हुआ है उसका होम मिनिस्टर अमित शाह जिम्मेदार है।
6: All right, and joining us today on the show, we have Sanju Verma, national spokesperson of the BJP. Tavleen Singh, author, joins us along with senior journalist Ashutosh. And my first question is to Irfan Ansari, cabinet minister in the Jharkhand government. Irfan Ansari sahab, sabse pehle aapse sawal yahi puchenge ki aapne aaj saaf saaf bol diya ki hum pitte ja rahe the, yani ki police pitti ja rahi thi, lekin lathi charge nahi hua, bal prayog nahi hua. Jo video aa rahe hain wo to kuch aur hi kahani bayan kar rahe hain. To lathi charge hua Jharkhand mein ya nahi hua?
11: Ma'am, meri baat suniye na. मैं सच्चाई में बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर खुद हूँ, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ। अगर लाठी, एक मिनट सुनिए, अगर लाठी चार्ज हुआ मैडम तो कितने लोग घायल हुए, इसकी पुष्टि है क्या आपके पास? केवल दो बच्चे आए हमारे पास, वो भी उनको भूख लगा था, भूख स्ट्राइक पे थे, किसी को चोट नहीं लगी मैम। चोट किसको लगी? पुलिस को लगी। पुलिस अगर नहीं चाहती मैम, अगर मान लीजिए पुलिस अगर चाहती तो बच्चे क्रॉस नहीं कर सकते, लाइन लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकते। आप बताइए, विधानसभा के अंदर तक बच्चे आ गए, आप हमारी सहनशीलता का परिचय ले रहे हैं? केवल ड्यू टू राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, कोई अटैक नहीं करेगा। और जब रात में जब वहां पर भाजपा के लोग आ गए, युवा मोर्चा के लोग आ गए, वो लोग ड्रामा करने लगे, वो लोग हिंसा करने लगे, वो लोग तोड़फोड़ करने लगे, इसके बचाव में भी फिर भी पुलिस ने शांतिपूर्वक उनको भगाया वहां से। उसके बाद आप लोग क्या क्या मैसेज दिखा रहे हैं कि लाठीचार्ज, ये बंदूक चार्ज नहीं हुआ है, ये AK-47 चार्ज नहीं हुआ, एक भी गोली नहीं चली है वहां पर। हम लोगों ने पीसफुली वार्ता किया। और मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड मैडम, देखिए जो बच्चे आंदोलनकारी हैं, हम लोग वार्ता कर रहे हैं, 95% हम लोगों ने मांग उनकी मान ली है, कुछ आगे पीछे वार्ता चल रही है, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है, भाजपा मजा ले रही है। हुआ ये भाजपा, आपको जब युवा नहीं चाह रहा है, आपको जब झारखंड की जनता नहीं चाह रही है, तो आप क्यों बीच में आ रहे हो भाई? आप नकली हितैषी क्यों बन रहे हो? आप सिंपैथी लेने की बात क्यों कर रहे हो?
6: ठीक है, आज देखिए, तो आप कह रहे हैं कि जिनको भी लाठी लगी है वो लोग नहीं, युवा मोर्चा के थे, वो भाजपा के थे, किसी भी युवा को लाठी नहीं लगी है। संजू वर्मा, रिस्पॉन्ड टू दैट। नहीं,
11: इसी लोगों ने
12: medical education and health minister of Jharkhand and from the Congress party. The Congress incidentally has 4 members in the 11 member cabinet of Jharkhand. शर्म नहीं आती है यहाँ पर लाठी चार्ज जो पुलिस ने किया? आप बोलते हो लाठी चार्ज हुई है,
11: तो आपको शर्म आएगी? हम क्यों बोल रहे हो?
12: जब जंतर
11: क्या लाठी, कितने लोग घायल हो? ये बंदूक गोली चली है क्या? हम मार खा रहे हैं, हम मार खा रहे हैं, क्या उल्टा पुल्टा बकवास कर रहे हैं आप? हम मार खा रहे हैं, हमारा सर फूट रहा है, हम पीछे फिर भी पीछे, ये तो कॉमन सेंस की बात है।
12: It is not my job to moderate the debate.
6: Mr. Ansari, I will give you time to respond. Please, आप 5 मिनट दीजिए उनको, 2 मिनट अपना ओपनिंग स्टेटमेंट करने दीजिए, मैं आपके पास वापस आऊंगी। संजू वर्मा, फिनिश योर पॉइंट।
11: बोलिए
12: मैम। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिस्टर अंसारी, खबरदार, मैंने यहाँ पर कोई बकवास नहीं किया। डोंट यूज दैट काइंड ऑफ फाउल लैंग्वेज ऑन दिस शो। आप मिनिस्टर हैं तो थोड़ी गरिमा दिखाइए। यहाँ बैठकर ये बकवास कर रही है, ये सब क्या तरीका है बात करने का? आपको थोड़ी शर्म नहीं आती है? नेशनल टीवी पर कैसे बातचीत होती है? लेट मी नाउ से दिस, लाठी चार्ज, डिड इट हैपन, यस और नो? द आंसर इज
11: यस। वो हमको तमीज नहीं सिखाएगी, मैं बता दे रहा हूं।
12: यस और नो, द आंसर इज यस।
6: ओके, कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन टू नॉट मेक दिस पर्सनल एंड वन पर्सन एट अ टाइम। यस
12: यस, द लिमिटेड पॉइंट इज दिस, टू ट्राई एंड
11: आप के बारे में बोल रहा हूं तो बुरा लग रहा है इनको।
12: You know, look at this man. He's क्या हो गया आपको? थोड़ा सब्र दिखाइए, मेरी बात खत्म हो जाए, बाद में आप बताइए, आपको जो बोलना है बोलिए, थोड़ा चुप रहिए, शांत रहिए 2 मिनट। The limited point is this. I repeat, lathi charge happened, yes or no? Yes. Were women stripped? Yes or no? Yes. There are authentic videos on social media where young girls are saying how they were physically manhandled by male police officers. Women police officers were not there in adequate numbers. The third point, when a lathi charge happens at Jantar Mantar, the Darbari ecosystem cries foul. But when a lathi charge happens at Ranchi in Jharkhand, we are given various lame excuses to justify the police brutality. Why? What should be sauce for the goose should be sauce for the gander too. You should apply laws with the same kind of restraint. If you said that Jharkhand is something where protests have been peaceful, then my limited question is, why the need for police excesses? Why the need for a lathi charge to start with? I did not see anyone...
6: Because SSP Ranchi has said that 14 policemen have been injured, including one who's got stitches to his head. That is what SSP Ranchi has said on record. 14 policemen have been injured, and there were things which were thrown from the side of the protesters as well. And they are arguing, when you defended it in Delhi, then why are you accusing them of excesses in Ranchi? This is what happens. The shoe's on the other foot, Sanju Verma.
12: No. Let me make one thing very clear. When there was the Jantar Mantar protest and there were police excesses in some cases, I have been on your show and I have condemned that unequivocally, saying, indeed, if that happened, I'm not going to condone that. I'm not going to endorse that. But you cannot be asking questions to BJP when something happens in Jantar Mantar and also asking questions to BJP when something happens in Jharkhand, which is ruled by the Congress and the JMM. सत्ता की मलाई खाने के लिए कांग्रेस वाले लपक के भाषण देते हैं. राहुल गांधी, why has he not visited झारखंड?
6: Now let Mr. Ansari respond. जब आप इतने आक्रामक थे, जब जंतर मंतर पे पुलिस ने लाठियां मारी थी, यहाँ पे आप कवर अप करके नहीं कह सकते मिस्टर अंसारी कि हमारे ऊपर पत्थर मारे गए थे इसलिए हमने रिस्पॉन्ड किया. यही आर्ग्यूमेंट आपने दिल्ली में बाय नहीं किया था.
11: मेरी बात को आप थोड़ा सुन लीजिए. दिल्ली का आंदोलन कुछ और था, झारखंड का आंदोलन कुछ और है. झारखंड में जो आंदोलन में भाजपा घुस गई है और भाजपा आंदोलनकारियों का जो आंदोलन है उसको हाईजैक करना चाहती है. दूसरी बात मैं कहूँगा, बार बार जो आप लोग कह रहे हैं लाठीचार्ज, मैम देखिए, हम लोग अगर नहीं चाहते मैम तो बच्चे लोग विधानसभा तक नहीं आते. कहीं ना कहीं डायरेक्टली बोलिए या इनडायरेक्टली बोलिए, हम लोगों ने पीसफुली प्रोटेक्शन को सपोर्ट किया. हम लोग मार खाए, हमारे पुलिस वाले मार खाए, हम बैक हटते गए. उसके बाद रात में जब आंदोलन में भाजपा के लोग घुस गए, युवा मोर्चा के लोग घुस गए, उसने विधानसभा के अंदर पथराव कर दिया. अब विधानसभा बताइए, वो एक संवैधानिक संस्था, वो विधानसभा है, वो आप क्या चाहते हैं कि भाजपा वहाँ घुस जाती क्या, बच्चे वहाँ घुस जाते क्या? इसको लेकर पुलिस वालों ने उनको कहा शांतिपूर्वक आप
6: चले जाओ. आर्ग्यूमेंट पार्लियामेंट
11: चले गए,
6: यही आर्ग्यूमेंट पार्लियामेंट में दिया जा रहा था.
11: इसको
6: इन पार्लियामेंट द प्रोटेस्टर्स हैड कम विद इन 500 मीटर्स ऑफ पार्लियामेंट आल्सो. दैट इज द प्रॉब्लम विद पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट.
11: झारखंड एक पहली सरकार ऐसी है मैम, जहाँ मैम देखिए, झारखंड की पहली सरकार यहाँ है जहाँ हमारा पुलिस, हमारा तंत्र, हमारा एजेंसी, हम लोगों ने कार्रवाई किया. JPSC के चेयरमैन को हम लोगों ने अरेस्टिंग किया, 19 लोगों को गिरफ्तारी किया, जांच चल रही है मैडम. और सबसे बड़ी बात है, TDPL जो एजेंसी है वो उत्तर प्रदेश की है, वहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, आप वहाँ पे नहीं बोलेंगे, ये भाजपा के लोग वहाँ नहीं बोलेंगे. दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, गुजरात में आए दिन पेपर लीक होता है, ये लोग चुप रहते हैं. उत्तर प्रदेश हब है, मास्टर पेपर लीक का हब है, वो लोग चुप रहते हैं. बगल में सटा बिहार है हमारा, आए दिन वहाँ पेपर लीक होता है, लेकिन ये कुछ बोलेंगे नहीं यहाँ. और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में ये हाल है, मध्य प्रदेश में आपने देखा, चार दिन पहले पेपर लीक हुआ, कोई आवाज नहीं. हमारे सरकार ने पहली बार कार्रवाई किया मैडम, और हम लोगों के साथ है, सरकार उनके साथ
6: है. That cannot be selective and that is what becomes very curious.
11: Yeah, ma'am.
6: When people have different standards, and let me bring in Ashutosh and Tavleen Singh on this. Tavleen Singh, just a second. Tavleen Singh, what do you make of the Jharkhand government's response? And more importantly, does it make things very awkward for Rahul Gandhi? The fact that you have 549, he says, there should be no use of force. 7 p.m. a lathi charge happens. There are multiple accounts where men, women, young boys are saying, we were beaten like dogs on the street. What does Rahul Gandhi do now?
13: I'm not at all interested in what he does. There is a bigger issue here. You have young people in the streets of our cities because they're fed up with politicians lying. And what are you doing in Delhi when something happens? The politicians lie. Now in Jharkhand, something's happened. And again, they're lying. There is a really serious problem with the young people of India losing total faith in our political leaders. So you need to look at the much bigger picture. I'm not interested in hearing, you know, Uttar Pradesh maybe hua tha or falani jagah hua tha or ye. That isn't the point. The point is violence happened in both places. It is indefensible, and it shouldn't be about Rahul versus somebody else. It isn't about that. It's about the fact that the more lies that politicians tell in their defense, the less faith that the young people of India are going to have in them, and that is a very serious issue.
6: But that's exactly what happens eventually. The way we see things going on in the Lok Sabha, every day there are disruptions because now the violence at Jantar Mantar is not about the students at all. It is about Amit Shah must answer.

0: choose of students make the start, argues Ashutosh. Respond.
1: Now, let me tell you one thing. You know, Tavleen Singh is not here, but let me say that her generic statement saying all politicians lie, no. Prime Minister Modi reached out to Gen Z. We sent 47 members of the NTA. We said that the NEET exam will be held in CBT format from next year. We came out with the Public Examinations Amendment Anti-Cheating Act of 2026. So if Tavleen Singh says that all politicians are alike, she certainly not done her homework before coming on your show. But I will tell you what, Padmaja. I can give three instances very quickly. Please bear with me. ACP Punjabi Bagh. Mr. Jayaprakash came home. Unki bitiya ne press conference mein kaha he was soaked in blood. Rahul Gandhi ne ek baar nahi kaha ki police karmchari ko itni buri tarah se kyun pita gaya. ACP Connaught Place, Vivek Bhagat, brutally thrashed by a bloodthirsty crowd. Ek baar Priyanka Vadra, Rahul Gandhi, darbariyon ke muh se chu nahi nikli. Fir senior policeman Hemendra Rathi, unki bitiya bhi press conference mein thi. Unhone kaha jab mere pitaji ghar aaye to unki puri uniform khoon se latpat thi. Rahul Gandhi se jab pucha gaya, what did he say to a reporter 48 hours back? Arre, aap BJP ke patrakar ho kya? Aaj Priyanka Vadra ko pucha gaya, aap Ranchi kyun nahi ja rahi? Rahul Gandhi Ranchi kyun nahi ja rahe? To Priyanka Vadra is saying, arre hum chale jayenge na, aap apni chinta karo. Look at the callous behavior of leader of opposition and a paid darbari like Ashutosh, 6 years, and has no guts to question Rahul Gandhi, but Pradhan Mantri Amit Shah ke baare mein anap shanap bolna hai. That is all you do. Who is
0: okay, I am going to let this woman respond to you. I want to just draw that line on this show. Please don't use words like paid darbari. This is not becoming of anyone. And it is not serving any purpose. It is just creating unpleasantness. You're all my guests. And I think it is responsible. It is my responsibility to ensure that everyone is treated in a civil and respectful manner. I am going to make this last request. Please do not use these words for each other. It is not becoming of either one of you or of this show or of me as its host. Final request. Mr. Ansari, please respond. यहाँ पर नारे लग रहे थे कल लाठी चार्ज होने के बाद राहुल गांधी रांची आइए, राहुल गांधी रांची आइए, और ये बीजेपी व्हाट अबाउटरी नहीं कर रही है, यहाँ पर बच्चे भी कह रहे हैं राहुल गांधी रांची आइए।
2: मैम एक मिनट, मैम मेरी बात देख सुनिए मैडम, बीजेपी को राहुल गांधी से इतना डर क्यों है? क्या राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज है, जनता की आवाज है? हर चीज में ये लोग राहुल गांधी को टारगेट कर रहा है क्यों? यहाँ राहुल जी ने कहा कि पीसफुली आंदोलन करो, हम लोग मार खाए, पुलिस हमारी मार खाई, फिर भी एक जरा भी हम लोगों ने एक्शन नहीं लिया। हम लोग रिस्पेक्ट करते राहुल जी को, क्योंकि एवरी स्टूडेंट राहुल जी राहुल जी राहुल जी, सारे लोग राहुल जी को याद करते हैं। यहाँ ऐसी कोई बात, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम की सरकार है,
0: हम सर, आप कैसे ऐसे डिनाइल में रह सकते हैं?
2: आपके माध्यम से
0: हमारे कैमरे पे लड़कियों ने बोला है कि मेल पुलिस ने उनको घसीट घसीट के सड़क पर उनको मारा, उनको लाठियों से मारा, और आपको विश्वास
2: मैं
0: नहीं
2: तो
0: है,
2: मैं झारखंड में हूँ, ऐसी कोई बात
0: शो
2: नहीं
0: में
2: है मैं।
0: हम आपको सुनाएंगे
2: ये प्रोपेगेंडा भाजपा के द्वारा फैलाया
0: गया। मैं भी झारखंड में हूँ अभी सर,
2: ये भाजपा
0: मैं आज एक अस्पताल में लड़के से मिलके आई हूँ,
2: हमारी है,
0: मुझे दिखाया, उसके हाथ पे लाठी लगी है, उसकी पीठ पे यहाँ नेक में लाठी लगी है,
2: हमारे बच्चे हैं, किसी बच्चे पे गोलियां नहीं चलाया गया है। हम लोग पीसफुली जो लोग युवा आंदोलन कर रहे थे, हम लोग उनका समर्थन किए हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ एकदम एश्योर रहिए, आंदोलन जल्द खत्म होगा, सरकार बातें मान रही है, हमारे बच्चे भी तैयार हो गए हैं, लेकिन ये भाजपा के कारण ये लोग उसका रहे थे कि तुम लोग पीछे, तुम लोग मत हटो, तुम लोग अपने बात पे कायम रहो, इसी का परिणाम है ये सब हो रहा है। सच्चाई यही है, आप जो डिबेट करा रहे हैं वो दिल्ली के लोग हैं, लेकिन झारखंड
0: की अंसारी साहब सच्चाई क्या है ना, तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं,
2: ना
0: यहाँ पे पैनल पे बैठे हुए कोई डिसाइड कर
2: सकते हैं।
0: अल्टीमेट पर्सन हु विल डिसाइड व्हाट इज द ट्रूथ एंड व्हाट इज राइट इज गोइंग टू बी दीज वेरी पीपल फ्रॉम झारखंड टू जंतर मंतर, द जेन ज़ी दैट यू आर स्पेंडिंग स्लीपलेस नाइट्स ओवर, दे आर वॉचिंग यू, दे आर लिसनिंग टू यू, एंड दे विल जज यू अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू प्रेसिंग दैट बटन ऑन द EVM. They will be your final judge. I will leave it at that. Thanks very much, all gentlemen, Tavleen Singh and Sanju Verma, for joining me. And since you've heard over the last 35-40 minutes people saying again and again that there is a false equivalence, nothing happened in Ranchi. I will get to you

0: झारखंड सरकार हमें लाठी नहीं गोली मारो, क्यों
1: मैम? क्योंकि देखिए, ये सरकार हम लोगों को लाठी मारेगी, हम लोग फिर से आ जाएंगे, फिर से अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो हम सरकार से कहते हैं, आप इतनी बर्बरता दिखा सकते हैं तो एक बर्बरता की सारी हदें पार करके गोली मार दीजिए, ताकि ना हम लोग जिंदा रहेंगे ना अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। जिंदा रहेंगे तो हम लोग आएंगे, अपने भविष्य के लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम लोग उस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम अपने भविष्य को अंधेरे में नहीं धकेल सकते हैं।
0: मंडे को हुआ क्या रात?
1: कल हम लोगों के साथ ये हुआ, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पुराना विधानसभा से मार्च करते हुए जा रहे थे, चार पांच बैरिकेडिंग लगी थी, लास्ट बैरिकेडिंग में गए, वहाँ पे भी लाठी चार्ज किया गया, आंसू के गोले छोड़े गए, पानी का वो छोड़ा गया। उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते विधानसभा जो नया वाला है उससे बहुत ही पहले खड़े, मतलब आके रुके हुए थे।
0: कितने बजे की बात होगी? जब
1: सात साढ़े सात के आसपास के बीच,
0: मतलब अंधेरा हो गया था।
1: हाँ, अंधेरा हो गया था। हम लोग वहाँ बैठे थे, साथ में रांची का जो SP है वो हम लोगों के साथ में बैठा हुआ था, वो हम लोगों से कह रहा था कि आप लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहिए और निकल जाइए। तो सर लोग हम लोगों को कुछ कुछ बाहर कर रहे थे, लेकिन ये लोग अचानक से उधर 8-10 गाड़ियाँ आती है पुलिस की, पूरे रोड में पुलिस लगी रहती है, चारों तरफ से घेर लेती है, और जहाँ बैठे थे वहाँ का लाइट ऑफ कर देती है, और लाठी उठा के ले धनादन जो शुरू करती है, जैसे हम लोगों के साथ जानवरों की तरह मारा जा रहा है, कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। हम लोग इधर से भाग रहे हैं, खेत में उतर रहे हैं, तो खेत में भी पुलिस आ रही है, दौड़ा कर मार रही है। और सबसे बड़ा मतलब ये देखिए मैम, कि एक भी वहाँ पर महिला पुलिस नहीं है, और हमारी बहनों को वो पुलिस मार रही है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा मैम?
0: आप कह रहे हैं लाइटें
1: ऑफ करके, क्योंकि वो चाहता था कि अंधेरा का फायदा उठा के मारा जाए। और ये कह रही थी पुलिस कि यहाँ अच्छा हुआ कि रात में मारे हैं, क्योंकि यहाँ मीडिया नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि जब मीडिया रहेगी तभी पुलिस डरेगी। ये झारखंड सरकार ने पुलिस के रूप में गुंडे पाल रखे हैं, जो हम लोगों को लाठियों से मरवाते हैं। अरे साहब, आप लाठी से नहीं गोली मारिए, गोली मारिए, ना जिंदा रहेंगे ना हम लोग आवाज़ उठाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। अगर संघर्ष बलिदानों से लिखा जाता है तो हम लोग बलिदान देने के लिए तैयार हैं। क्यों दोस्तों, तैयार हो? हम लोग बलिदान देंगे।
0: ये बताइए कि वहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी, क्योंकि पुलिस का कहना है वहाँ पर धारा लगी हुई थी।
1: पत्थरबाजी नहीं हुई है, ये झूठ बोल रहा है,
2: पत्थरबाजी।
0: आगे आइए, बताइए। 7 बजे यानी कि अंधेरा हो गया था, 6 बजे के आसपास राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि कोई लाठी नहीं चलनी चाहिए, आप कह रहे हैं उसके बाद लाठी चली।
3: मैम तकरीबन 7 बज रही थी, अब छात्र लौट रहे थे, जो नेतृत्व कर रहे थे वो लोग
0: लौटना शुरू कर रहे
3: हैं। यस मैम, लौट रहे थे शांतिपूर्वक, पहले नेशनल एंथम हुआ उसके बाद सब छात्र लौटना स्टार्ट कर रहे थे मैम। उसी बीच में मैम 300 से 400 पुलिस बल आई पीछे से, ठीक है, मैं तो पीछे देख नहीं रहा था क्योंकि इतना कस के सब भागने लगे, और मैं मारना चालू कर रहे थे वो, कि सब कोई को, लेडीज़ को भी मारा जा रहा था, कोई लेडीज़ पुलिस फोर्स भी नहीं थी वहाँ पे।
0: आप कह रहे हैं वहाँ पर आप नेशनल एंथम गा रहे
3: हैं? हाँ मैम, हाँ, पत्थरबाजी जो बोल रहे हैं ना, पत्थरबाजी हुई है, बिल्कुल झूठ बात है मैम, वहाँ पत्थर रहता ही नहीं है मैम। मैम 7-8 फीट के ऊपर से कूदे हूँ मैम, मैं यहाँ चोट लगा हुआ है मुझे, ये आप देख सकते हैं,
0: पैर दिखाइए,
3: पैर में स्ट्रेन है मैम, स्ट्रेन है यहाँ से यहाँ पे, ठीक है।
0: आप ऊपर से कूद गए?
3: कूद गया मैम, देख लीजिए आप। और मैं पुटुस का जो झूठ होता है उस पर गिर गया मैं, गिर गया तो मुझे छात्रों ने ही उठाया था, और रात में पुलिस, बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे कि नहीं आएगी पुलिस, नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन ये पुलिस आई वहाँ तक खेतों में, और खेत तक मारा गया मैम, खेत तक दौड़ा दौड़ा के मारा गया।
0: और मैंने कुछ तस्वीरों में देखा कि कुछ बच्चे बैठे हुए थे जमीन पर, उनको
1: खींच के मैडम
3: इधर भी हाथ पकड़ लिया गया, इधर भी हाथ पकड़ लिया, वैसे मारा गया उन लोगों को, यहाँ तक कि मीडिया के आदमियों को भी मारा गया, जो लोग दिल्ली से आए हुए हैं उन लोगों को भी मारा गया।
0: एक बात बताओ, आप कहाँ पर बैठे थे? क्या आप विधानसभा के अंदर घुस?
3: नो मैम, गेट नंबर 1 के बाहर बैठा हुआ था मैं,
1: हम लोग सारे से बहुत बाहर बैठे, अंदर में नहीं थे,
3: बाहर बैठे हुए थे जो रोड है वहाँ पे,
0: यानी कि विधानसभा परिसर। सो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर व्यूअर्स, देयर इज अ न्यू विधानसभा व्हिच इज वेयर द असेंबली वाज इन सेशन। नाउ द मेन गेट इज गेट नंबर 1 वेयर एवरीवन एंटर्स एंड एग्जिट्स। आउटसाइड ऑफ दैट गेट, मतलब उसके अंदर भी नहीं, उसके बाहर आप
3: बाहर
1: में
3: बाहर।
1: हम लोग
0: बाहर, आप अंदर घुसने की कोशिश?
1: नहीं, क्यों हम लोग घुसेंगे
3: मैम? यहाँ के छात्र आज मिसाल बन गए हैं पूरे इंडिया के लिए, नेशनल एंथम हो रही है, हम लोग पुलिस, झारखंड पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं,

0: इनका ना हम लोग ऐसा कोई नारेबाजी किए, ना पत्थर चलाया हम लोगों ने, उसके बाद भी हमारे ऊपर ऐसा बर्बरता किया गया है। आज बोलते हुए दुख लग रहा मुझे कि हम झारखंड में पैदा लिए। इस तरह का फीलिंग आ रहा है मैम,
1: हम लोग बहुत ही
0: ऐसा लग रहा था कि हमें अंग्रेज राज तो देखा नहीं था, लेकिन जैसा मारा गया ना बच्चों को, मतलब बर्बरता हद पार कर दिया गया मैम। जबकि किसी ने ना पत्थर चलाया, आज मैं देख रहा था कि असामाजिक तत्व के लोग घुस गए थे, इसके वजह से पत्थर चला रहे थे और हमें बलपूर्वक प्रयोग करना पड़ा, ऐसा न्यूज में देखा हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूछ सकते हैं किससे मैम?
2: अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम मनोज यादव है।
2: तो हुआ क्या फिर 7 बजे जब अंधेरा था तो पुलिस ने लाठीचार्ज?
3: बस सबसे बड़ी बात है कि जब अंधेरा हुआ तो करीब 50-60 बस में आया सब रेप के जवान, और वो लोग कुछ मैंने पूछना उछना नहीं था कुछ ही को, जो मिल रहा है उसको मारना है। मैंने किसी से, वो स्टूडेंट रहे आम पब्लिक रहे, कोई मतलब नहीं है, कौन आंदोलन में था कि नहीं था कोई मतलब नहीं है, खाली मारना शुरू कर दिया। और हम अब आंदोलन खत्म हो गया था, चुपचाप हम लोग से किनारे में बैठे हुए थे, आए और पूरा देना शुरू कर दिया।
2: कितने लोगों ने मारा?
3: हमको 5 पुलिस लोगों ने जो है मिल करके पहले ये घुटने ये से मार मार करके पहले बैठा दिया जमीन पर, उसके बाद लाठी से मारने लगा। देखिए ये कंधा तो लग रहा था कि टूट गया है उस टाइप का, ये देखिए पूरा ये। और दूसरी बात है कि आप देखिए ये जो पीठ जो है आप देख रहे हैं, ये पूरा पीठ ये करके पूरा जो है ये पूरा पीछे, और ये जो ये देखिए पूरा टाइट हो गया है, यहाँ जांग में भी जो है पूरा टाइट करके एकदम पलट पलट करके मारा है। अब मतलब इतना ही समझिए कि अगर यदि हम उठ, अब वो लोग मार करके थक गया, हम भागे नहीं, अब जो जितना मारना मार लो, क्योंकि इतना मार चुका था जो कि हम भागने लायक थे ही नहीं, तो जो करना है सो तुम्ही को करना है, वहीं पर पड़े रहे जाओ जो करो। फिर एक जो है उधर से मेरा साथी आया, उसको उठाया वो वार टेम्पू में, फिर वो बिठाया, उसके बाद यहाँ घटनास्थल पर लेके।
2: ये करने से पहले लाठीचार्ज जब शुरू हुआ उसके पहले कुछ लाउड हेलर पे कुछ आवाज आई, कुछ
3: अनाउंस प्रकार का कोई अनाउंसमेंट नहीं?
2: हट जाइए
3: भाग जाइए, आप जो है आप लोगों का प्रदर्शन खत्म हो चुका है, ऐसी बातों को करना चाहिए था ना। अब कोई भी लड़का लोग बताएगा कि कैसे हमको बेरहमी से मारा जा रहा था, तमाम लोग जो ऐसे देख रहे थे।
2: आपने भागने की कोशिश नहीं की?
3: हम क्यों भागू भाई? अरे बाबा आपको 5 आदमी घेर के मारेगा तब भाग पाइएगा। अब हम निहत्था हैं, उनके पास लाठी है, उनके पास में राइफल है, जो कुछ है सब, कि अगर यदि हम भागने की कोशिश करते गोली मार देता, तो मार लो भाई लाठी मार लो जितना मारना है, और बेहतर होता गोली मार देता भाई, लाठी से क्यों मार रहे हो तड़पा तड़पा करके बच्चों को। एक तो हम आप माप से एक तो बता रहे हैं जन्मदिन का बढ़िया तोहफा दिया गया, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था, हम लोग तो सेलिब्रेट करके उनको बधाई दिए, और मैं बता रहा हूँ इसके लिए आपका ये चैनल पर मैंने जो है सो उनको बकायदे केक खाते हुए बच्चों को और हैप्पी बर्थडे का उनको होगा आपके पास में वीडियो, हम लोग बर्थडे का उनको बधाई दे रहे थे और हम लोगों को गिफ्ट मिल रहा था।
4: The most disturbing part of the police action comes from the women. Dragged, beaten, shoved into the fields, and all of this when no female police was present. There were several women who were among the protesters who got beaten on Monday night, and their claim is that there were no women police officers, no women police, women cops among those who took them out, who conducted a lathi charge. One such lady is here with us. आपके पैर में भी चोट लगी है, आपको लाठी पड़ी?
5: जी मैम।
4: क्या हुआ?
5: मैम हम लोग पीसफुली बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे अचानक से पुलिस आती है, फोर्सेस ढेर सारे, कोई मेल वहाँ पे फीमेल पुलिस नहीं थी, अचानक से लाठी बरसाई गई हमारे ऊपर, हम लोगों ने अपने बचाव के लिए राष्ट्रगान को गाना शुरू किया, फिर भी इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ताबड़तोड़ हम पे लाठियाँ बरसाई जा रही थी। ऐसे में हमारे सर लोग और जितने भी भाई लोग थे वो प्रोटेक्शन करके हम लोगों को वहाँ से निकाले हैं, लेकिन बचाव में उन्हें काफ़ी चोट आई है। और उसके बाद जब हम लोग वहाँ से निकले, मतलब क्या ही बोले आपको, बहुत मुश्किल से रात में घर पहुँचे हैं। फिर उसके बाद
2: तो आप राष्ट्रगान गा रहे थे और उसके बावजूद लाठी चली?
5: जी जी मैम।
2: और आप सड़क पर बैठे हुए?
5: जी।
2: तो लाठी में आपको क्या, लाठी चार्ज हुआ, घसीटा गया, क्या हुआ?
5: ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई ही जा रही थी, पैर पे लग रहा है, कहाँ लग रहा है उसको, उससे कोई मतलब नहीं था। बहुत सारे भाई का तो सर भी फटा, गए टंगा टंगा कर। दिल्ली में तो कम से कम था कि वहाँ लोग खुद के पैरों पे चल के भी जा रहे थे, यहाँ की सरकार की तो पता नहीं क्या मनसा थी, इस कदर मार रहे थे कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, सीधा बेहोश, उनको 5-6 लोग उठा उठा कर लेकर जा रहे हैं। ये कल सुबह से लेकर कल रात तक का यही नज़ारा रहा है वहाँ पे। उसके बाद मतलब ये सरकार क्या है, इसको कोई समझ नहीं है, ना ही हमारे संविधान का सम्मान है, ना ही हमारे राष्ट्र झंडा का सम्मान है, ना ही हमारे राष्ट्रगान का सम्मान है, क्या है ये सरकार?
2: क्योंकि पुलिस कह रही है उनको ये अंदेशा था कि कहीं विधानसभा के अंदर ना घुस जाए।
5: मैम हम लोग विधानसभा के अंदर घुसने का प्रयास ही नहीं किए हैं, हम लोग इंतजार कर रहे थे वहाँ पे, इंतजार किए हैं वहाँ पे। अगर पुलिस ये भी हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाती है कि पथराव किए हैं, आप चलिए अभी भी चलिए रोड पे, एक भी पत्थर दिख गया हो तो कहिएगा, साफ सुथरा रोड पे कहीं पत्थर है, आप जाके देखिए, सर्च करिए आप इस चीज को।
2: और सिटी पुलिस ने तो आपको आश्वासन दिया था, तो फिर आपने बोला नहीं कि महिला पुलिस किधर है, पत्थर हमें क्यों मारा जा रहा है?
5: मैम इतना बोलने का वो लोग नहीं समय दिए, नहीं समय दिए, हम लोगों को उस वक्त बचना था, अगर इतना शायद बोलने जाते तो यहाँ पर दोबारा हम बोलने लायक भी नहीं रहते, जिंदा रहते कि नहीं रहते इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। इस तरीके से हम लोगों को मारा पीटा गया है।
2: एंड इट्स नॉट जस्ट पीपल हु वर अडल्ट्स वुमेन बट इवन चिल्ड्रन हु गॉट कॉट इन दैट क्रॉस फायर। आपको कल लाठी पड़ी, आप कहाँ दिन में थी वहाँ पर जहाँ पर प्रदर्शन?
1: जो पुलिस हमको घुसने नहीं दे रही थी जब वहाँ पर हम बैठे थे, और दिन से हम कुछ भी नहीं खाए थे, सुबह हम 7 बजे निकले हैं, बिना पानी पिए हुए रोड चलते बने हैं, तब वहाँ जाके बैठे तो हमको पूरी दिया गया था कि आप थोड़ा साइट हो जाइए बोल के दिया गया था, और पूरी जैसा मुँह में लेने गए तो हमको जो आंसू गला है ना, दो टो फुटाया गया, हम अकबक हो गए, तभी पुलिस दौड़ के आ गई, हमारे पैर पर लाठी मारी है, पैर में लाठी मारी है, मेरा पैकेट है ना पूरा कहाँ फेंका गया कुछ पता नहीं, पब्लिक ने हमारे पीछे से पैकेट पकड़ के मुझे दिया है, हमारे बच्चे को कुछ दिख रहे नहीं थे आंसू के गोले से, इसको भी लाठी पड़ी है, फिर हमको ना हो गए, फिर हम अंदर गए,
2: बच्चे को मार,
1: हाँ इसको भी मार पड़ा है, इसको भी कमर में, पुलिस कमरे में बहुत मारी है, और आंसू का गोला से ये बच्चा पूरा अंधा हो गया था, इसको कुछ दिख रहा नहीं था।
6: मैंने आंसू का गोला जैसे गिरा ना मैम, उसके बाद से मुझे कुछ दिखना ही बंद हो गया, दिखना बंद हो, मैं धीरे धीरे आँख खोलने लगा तो पुलिस, एक पुलिस नहीं मैम 3-4 पुलिस आई डंडा लेके, मेरे को पीछे बहुत जोर से मारी 2-3 बार, और यहाँ तक कि नहीं मैम लेडीज लोग को जेंट्स पुलिस मार रही है, जबकि एक भी महिला पुलिस नहीं है, मैं 3 बैरिकेड तोड़ा, मैं पीछे ही था, मैं आज तक नहीं देखा एक महिला पुलिस, सब लेडीज लोग को तो गंजी पकड़ के मार रहे हैं मैम, मेरे को बहुत जोर से मारे, हम लोग जंगल जंगल भागे हैं, IPS और IPS सर हम लोग के पीछे भाग रहे हैं, यहाँ पे भी
1: IPS सर थे, हम लोग जैसे जंगल में घुसे ना पीछे तरफ गेट से, पूरा कादा था, मेरा तो पैर टूट जाता, इतना मट्टी धसक गया।
2: आपको भी लेडीज पुलिस नहीं?
1: नहीं लेडीज पुलिस, सब जेंट्स पुलिस, और जैसा कि पूरा इतना बड़ा मट्टी गिरा, फिर भी हम खदड़ खदड़ के अंदर चले गए, तो अंदर में हमें एक तो आदमी बोला कि मैडम जान बचाना है तो आप यहाँ से निकल जाओ, यहाँ 500 पुलिस आई हुई है, इतना मारेगा ना कि आप निकल नहीं पाओगे।
2: तो बीमार भी आपका ट्रीट?
1: मेरा मैं लीवर कैंसर किडनी खराब है मैडम, ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है, और ट्यूमर है पेट में ना, उसका ऑपरेशन अभी गर्मी का बाद होगा, अभी तुरंत था, लेकिन ये बच्चों को मैं रोड में बैठता देखी तो ऑपरेशन को रोक दी, और मैं बोली बच्चों को समझ के आती हूँ हमारे झारखंड के बच्चों को क्या हुआ है।
2: आपको बोला नहीं आपने पुलिस को कि मेरा इलाज?
1: पुलिस सुनता नहीं है ना, पुलिस हमको देख नहीं रहा है।
6: मैंने बोला था कि मम्मी कैंसर मरीज है, उनका थैला लगा किडनी की मरीज है, अब प्लीज इनको ना मारे, मैं हाथ जोड़ के भी विनती किया, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने वो प्लास्टिक का डंडा नहीं था मैम, बांस का डंडा था, जबकि कानून के हिसाब से प्लास्टिक का डंडा होना चाहिए, बांस के डंडा से मारा गया, और यहाँ पे भी मैम हम लोग को सोने नहीं दिया गया, रात 3 बजे तक हम लोग को पुलिस पीछा की बोली तुम लोग को डिटेन करके लेके जाएंगे, तुम अगर यहाँ प्रदर्शन करोगे तो तुम्हारे पैर हाथ तोड़ देंगे हम लोग।
1: रात में 3 बजे यहाँ पूरा पुलिस भर्ती थी हम लोग को उठाने के लिए, हम जगह बैठे थे,
4: When the lathi charge happens in the middle of the night, then there is no way to discriminate between who comes in the way of the lathi. And which is why, whether it was women, whether it was children, whether it was protesters who had traveled from across the country, everyone got the short end of the stick, quite literally. Aap wahan par raat ko maujood the?
7: Ji, main maujood tha.
4: To phir kya hua?
7: वहाँ कोई ऐसी घटना नहीं थी, शाम को लोग आ जा रहे थे, पुलिस भी सामान्य, हम लोग भी सामान्य, हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, किसी तरह की कोई घटना होगी, कोई ऐसी बात नहीं थी। 7 बजे करीब पुलिस ने भेजना, कहा कि जाइए, निकलिए, और लाठी लेके पीछे से काफ़ी लोग आ गए पुलिस वाले, तो लोग लाठी ऐसे करने लगे, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से,
4: पीछे से आए,
7: पीछे से आ गए उस साइड, दूसरी साइड से, और रोड पर विधानसभा से दूर थे थोड़ा, तो वो रोड पर जो अंदर का रोड है वहाँ पर, वहाँ निकलने लगे, आगे होने लगे, जब लाठी ऐसे करने लगे तो लोग चलने लगे, तो वो मारने लगे, हम लोग हाथ जोड़ने लगे, चलने लगे, हाथ जोड़ते उनको मारा, खेतों की ओर तक मारते आए, और आगे तो उन्होंने कहर डाल दिया, जब अंधेरा आया, अंधेरे की साइड और खेतों की साइड, हम लोगों को बर्बरता से, ये देखिए, 2 लाठी यहाँ पर मारी उन्होंने, रात से दवा लग रहा है तो थोड़ा ठीक हुआ है, उसके बाद मेरे हाथ
4: पीठ पर लाठी पड़ी।
7: जी, नाम राजेश हिंदुस्तानी है, हरियाणा हिसार से युवाओं का समर्थन करने आया हूँ, क्योंकि पूरा भारत मेरा परिवार है।
4: तो उस वक्त जब लाठी चल रही थी तो आपने बोला नहीं कि भाई हम तो यहाँ पर, आपके हाथ में तिरंगा?
7: तिरंगा मेरे हाथ में 15 साल से है जी,
4: और उसके बावजूद लाठी,
7: उसके बावजूद पड़ी, उसके मैं हाथ भी जोड़ता रहा, जब जब सिर की ओर एक लाठी इधर से आया तो मैं जा रहा हूँ, रास्ता रोक के मार रहे थे मैडम, जब जाने का रास्ता है इधर से निकल रहे हैं तो दूसरी साइड से आके मार रहे हैं, हमने ऐसी बर्बरता जिंदगी में नहीं देखी। जब उन्होंने मारा तो एक सिर की ओर लगते मैं थोड़ा ऐसे झुका तो वो मेरे ही साथ में जो तिरंगा था ऐसे उसमें प्लास्टिक की डंडी में ये वो ऐसे लगा, वो दूर जा पड़ा, वो दूर जा पड़ा, तो मैं तिरंगा उठाने के लिए, मैं सर देश का झंडा, मैं उठा दो प्लीज़, मैं उठाने दो, मैं ऐसे बोला, तो उन्होंने उसको उठाने की बजाय मुझे यहाँ दे मारा डंडा, ये मुद्रिका अड़ गई तो डंडा मेरे ऐसे लगते हुए, ये देखिए। उसके बाद फिर मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि तिरंगा मेरी आन बान शान है, मामा के लड़कियों की, बुआ के लड़कों की शादियों तक मैं माँ बेटे नहीं गए, तिरंगा लेके नहीं आना, पागल सा दिखेगा, हम नहीं गए, 15 साल से मेरे हाथ में रोजाना है, बिना प्रोटेस्ट के सामान, जाम, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन,
4: तो ये दिन भर में फिर जो लाठी चार्ज नहीं हुआ था, फिर वो शाम को
7: 7 बजे हुआ, और बगैर किसी मतलब के हुआ, बगैर वार्निंग के हुआ, और जब वहाँ से मैं तीसरी बार उनको रिक्वेस्ट ऐसे करते करते करने लगा तो मैडम तिरंगे के ऊपर से रोनते हुए आए, वो सीन मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा, मेरे देश का तिरंगा उन्होंने पैरों से रोनते हुए, मैंने कहा मेरे को दे दो, उठाने दो, मैंने मेरे पिछले पार्ट में डंडों से धकियाते चले गए ऐसे करके आगे, और उसको रोंदा, 15 साल में कभी तिरंगा मैंने गिरने नहीं दिया, झारखंड की जालिम पुलिस ने मेरा देश का तिरंगा, जो शहीदों का अरमान है, उन्होंने तिरंगा इतना अपनी जान दे करके लिया था, वो तिरंगा भी रोंदा, सबसे ज़्यादा मुझे 2 डंडे और मार लेते, मैं घायल होके मर जाता तो गम नहीं था, लेकिन मेरे तिरंगे को रोंदा, भगवान माफ नहीं करेगा।
4: And a lot of people are talking about how this was completely unprovoked and what happened under the cover of darkness, unprovoked and without warning, the lathi charge started. But how will the government answer the children of Jharkhand? Why were they beaten in the cover of dark? With video journalist Ashwini and Praveen Yadav in Ranchi, Patanjali Joshi, NDTV.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: right from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
2: आप सिंदूर के समय की जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
3: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
4: पुशअप चैलेंज किया जाए? 28, 29, 30।
5: तुम भी कैसे? टाइगर जैसे।
6: Front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
7: So many attacks.
6: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
7: It's incredible.
6: He has seen history break. Live.

0: Officials said that they found safety violations in view of the unhygienic handling and storage conditions. From five-star hotel kitchens to quick commerce warehouses, the Bengaluru raids raise one fundamental question. If food safety standards are being compromised at multiple points in the supply chain, how safe is the food reaching the consumer's plate? Bureau Report, NDTV.
1: A political war of words has erupted over the decision to sing Vande Mataram at the Red Fort on Independence Day. In a historic first, the national song will be sung when the Prime Minister arrives at the Red Fort on August 15 before the national flag is unfurled and the Prime Minister delivers his address. The BJP has welcomed the move, calling Vande Mataram the song of India's independence and its martyrs, saying it will reaffirm the message of Desh Pratham. But the Samajwadi Party has objected, calling the move an attack on India's secular character. SP says that only first two stanzas were chosen for consensus and alleges that views are now being forcibly imposed.
2: 150वें वर्षगांठ के अवसर पर वंदे मातरम की थीम पर ही हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस होगा. उसी थीम पर पूरी झांकियां बनेंगी और यह गीत फिर से एक बार देश में की जो हमारा देश प्रथम का जो नारा है उसको साबित करेगा और जन-जन तक देशभक्ति की भावना पैदा करेगा, मातृभूमि की वंदना की भावना पैदा करेगा और देश में राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करेगा.
3: ये हमारे हिंदुस्तान का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है उस पर इनका हमला है. ये अपनी बात को जबरिया लाद रहे हैं. हिंदुस्तान के तमाम लोग जो विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं उनकी अपनी पद्धतियां अलग हैं, इबादत के तरीके फर्क हैं. तमाम लोग ईश्वर को मानते हैं, तमाम लोग ईश्वर को नहीं मानते. और छोड़िए, जो हिंदू जिन्हें लोग कहते हैं तमाम लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास ईश्वर में या देवी देवता में नहीं है. तो कुल मिलाकर के जब हाउस व्यवस्थित नहीं था तब उन्होंने ये कानून पास करा लिया और मैं समझता हूं हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है. ये अपनी बात लाद रहे.
1: And with that, it's time for us to slip in a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: right from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगाकर शिकार करते हैं।
2: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
3: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
4: पुशअप चैलेंज किया जाए? 28, 29, 30।
5: तुम भी कैसे? टाइगर जैसे।

0: from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
2: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
3: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
4: पुशअप चैलेंज किया जाए? 28, 29, 30।
5: तुम भी कैसे? टाइगर जैसे।